कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

श्रोता, ये था आज का नीति वचन। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की पहली प्रसारण सभा में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी, और आज के इस कार्यक्रम को हम सभी आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गैर अत तथा तकनीकी अभियंता जे कालो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रोता, आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों आपको बता दूं कि अब से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। तो दोस्तों 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक उसी के बाद 6:10 को प्रसारित होगा कार्यक्रम दोनी पोलो भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे तबक कुका एंड पार्टी की आवाज में भक्ति गीत। फिर 6:40 को आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार और ठीक उसी के बाद 6:45 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। सात बजकर दस मिनट को आप सुन पाएंगे आपतानी भाषा में समाचार और 7:15 को कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट पेश होगा। उसी के बाद 7:45 को आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार। 7:40 को सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार और ठीक 8 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। दोस्तों ठीक 8:40 को सुन पाएंगे आप कार्यक्रम हेलो ईटानगर और 9 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 9:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप और ठीक 10 बजे प्रसारित होगा फिर से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। दोस्तों 10:10 को आप सुन पाएंगे आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और ठीक 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों ये था आपसे लेकर दिन के 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात

0: यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The projects significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said, the government has eliminated the formidable challenges across these 3 internal security hotspots and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. Mr. Shah said, the 3 new criminal justice laws will be implemented 100% within the next year, aiming to ensure the resolution of criminal cases up to the Supreme Court level within 3 years and to boost the conviction rate by 25%. India has highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of the India-China bilateral relationship. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday.

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे दोनी पोलो भक्ति गीत कुछ ही पलों में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे की।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी, जो हर सुबह मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ हेल्थ वेलनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और टिप्स। तो सुबह सुबह एक सवाल है आपसे, आपने आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ बैठ कर दिल खोल के कब बात की थी, या फिर कब बिना किसी टेंशन के कोई गेम खेला था, मजाक किया था और बस कुछ वक्त एंजॉय किया था। आज की फास्ट लाइफ में हम सब के पास काम है, पढ़ाई करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फोन है, सोशल मीडिया है, लेकिन कभी कभी हमारे पास खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं होता। और इसी वजह से आज का हमारा टॉपिक है दोस्त और उनके साथ समय बिताने का इम्पोर्टेंस। हेल्दी रहना तो सिर्फ एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तक ही सीमित नहीं है, हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जब हम गेम्स खेलते हैं बच्चों के साथ, तो हम सिर्फ आउटडोर स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप खेल सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या फिर सिंपल से इंडोर गेम्स जैसे कि कैरम बोर्ड और चेस भी। गेम का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, जरूरी ये है कि आप थोड़ा वक्त अपने रूटीन से बाहर निकालें और अपने माइंड को एक ब्रेक दें। जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा फोकस कुछ देर के लिए डेली परेशानी से हटकर अभी के प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाता है। आपको बॉल कैच करनी है, ओपोनेंट का मूव देखना है, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है या चेस में नेक्स्ट मूव को सोचना है, मतलब दिमाग को एक हेल्दी डिस्ट्रैक्शन मिलता है और यही छोटा सा स्ट्रेस को मैनेज करने में ये ब्रेक हेल्प कर सकता है। तो आउटडोर गेम्स का तो एक बड़ा बेनिफिट है फिजिकल एक्टिविटी। तो आजकल हम काफी स्क्रीन टाइम से सामने निकल जाते हैं, लैपटॉप, टेलीविजन, फोन, और कभी कभी तो हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम कितने घंटों तक एक जगह बैठे रहे। खेलने से क्या होता है कि हमारा शरीर तो मूव करता है, रनिंग हो, जंपिंग हो, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या सिंपली एक्टिव रहना हमारे ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिल की हेल्थ के लिए, स्टैमिना के लिए, कोऑर्डिनेशन और मसल्स को एक्टिव रखने के लिए भी मदद करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गेम को कंपटीशन का प्रेशर मत बनाइए, हर बार जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी मैच हारना भी ठीक है, स्कोर बोर्ड से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है।

आपने मूवमेंट किया, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया और एंजॉय किया। तो दोस्तों आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जारी रहेगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ।
1: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताना, उनके साथ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेलना, ये आपके आपको एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि आपका इमोशनल और मेंटल वेलबींग सही रहे। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है सोशल कनेक्शन। तो हम सबको किसी न किसी पॉइंट पर किसी से बात करने की तो ज़रूरत होती है। कभी हम खुश होते हैं और कभी अपनी खुशी को शेयर करना चाहते हैं। कभी हम कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी पढ़ाई या काम का प्रेशर होता है, कभी फैमिली को लेकर टेंशन होती है और कभी बस मन करता है कि किसी के साथ बैठकर चाय पीते हुए रैंडम बातें करें। ऐसे मोमेंट में एक खास दोस्त बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके दोस्त के पास हो जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी किसी का पेशेंटली सुन लेना ही बहुत कंफर्टिंग होता है। इसीलिए आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आजकल हम सबके पास एक कॉमन सेंटेंस तो है, सब कहते हैं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं, स्कूल कॉलेज ऑफिस असाइनमेंट्स मीटिंग घर के काम, और फिर फ्री टाइम मिला तो फोन हाथ पे। लेकिन दोस्तों रिलेशनशिप्स भी अटेंशन मांगते हैं। अगर किसी दोस्त से महीनों तक प्रॉपरली बात नहीं करते तो कनेक्शन नेचुरली कमजोर हो जाती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप हर वीकेंड एक बड़ा सा कोई प्लान बनाएं। कभी 30 मिनट्स के लिए वॉक कर लीजिए, कभी बैडमिंटन खेल लीजिए, कभी फुटबॉल या क्रिकेट का छोटा सा मैच, कभी सिंपली आप पार्क में बैठकर बात कर लीजिए, तो कभी अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछ लीजिए भाई सब ठीक चल रहा है ना। छोटे छोटे एफर्ट्स भी आपकी फ्रेंडशिप्स को बहुत ही स्ट्रांग रखते हैं। और स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें मैनेज करना चाहिए। तो स्ट्रेस जो हमारे लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है, एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, काम का स्ट्रेस हो सकता है, फ्यूचर को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस को इग्नोर करना या सब कुछ अंदर ही अंदर रखना हमेशा हेल्पफुल नहीं होता है। हेल्दी कोपिंग हैबिट्स डेवलप करना जरूरी है। आपको एक्सरसाइज, गेम्स, म्यूजिक, हॉबीज, प्रॉपर से सोना और अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ बैठकर बात करना, ये सब हेल्दी वेज हो सकते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सके। और अगर कभी स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा हो कि डेली लाइफ इफेक्ट होने लगे, तो किसी कोई ट्रस्टेड एडल्ट, फैमिली मेंबर, टीचर या काउंसलर से या कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बिल्कुल ओके है। और एक छोटा सा चैलेंज आज के लिए, जब आपका फ्री टाइम आए तो आप फोन अनलॉक करने से पहले एक सेकंड रुककर सोचिए कि क्या मैं किसी फ्रेंड को मैसेज कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा क्या वॉक कर सकता हूँ, क्या मैं कोई गेम खेल सकता हूँ, मैं क्या अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। ये सारे सवाल आपको आने चाहिए। वही आपको फिर से बता दूं कि टेक्नोलॉजी तो बुरी नहीं है, सोशल मीडिया भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन रियल लाइफ कनेक्शन को आप कम्प्लीटली वो रिप्लेस नहीं कर सकता। एक ऑनलाइन मैसेज अच्छा लग सकता है, लेकिन कभी कभी फेस टू फेस बैठकर हंसी मजाक करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है। तो दोस्तों आज का रिमाइंडर सिंपल है, हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड और हेल्दी रिलेशनशिप्स भी जरूरी है। अपने रूटीन में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड कीजिए, कोई गेम खेलिए, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो कोई या हॉबी चूज कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दोस्तों और फैमिली के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। किसी फ्रेंड से आप पूछिए, अरे दोस्त आपका हालचाल कैसा चल रहा है, हो सकता है कि वो भी आपसे बात करना चाहते हो सकता है कि उसके पास कोई अच्छी न्यूज हो सकता है कि उसका दिन थोड़ा डिफिकल्ट गया हो, और हो सकता है अगर आप दोनों बस बिना किसी रीजन के एक साथ हंस पड़े। लाइफ में ऐसे ही मोमेंट्स की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये म्यूजिकल गीत।
0: पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: जाने वो कैसे

श्रोता, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आपको बता दूं कि आज का सुबह सवेरा कार्यक्रम बस यहीं पर समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे श्रोता, बस इतना याद रखिए कि काम जरूरी है, पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइफ को आपको एंजॉय भी करना सीखना चाहिए। कभी गेम खेलिए, कभी फ्रेंड से मिल लीजिए, कभी थोड़ा वॉक कीजिए, कभी अपने फेवरेट म्यूजिक सुन लीजिए, और कभी कभी बस बिना किसी एजेंडा के अपने लोगों के साथ वक्त गुजारिए। क्योंकि एक हेल्दी लाइफ चॉइस सिर्फ कैलोरीज काउंट करने का नाम नहीं है। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है शरीर को एक्टिव रखना, माइंड को रिलैक्स करना और अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आपातानी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इंफरटेनमेंट, जहां हम बात करते हैं हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स की और उन कहानियों की जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे दिन की जो वुमेन के राइट्स और इक्वालिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 26 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट्स में वुमेन्स इक्वालिटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का कनेक्शन अमेरिकन वुमेन्स सफराज मूवमेंट से है। 26 अगस्त 1920 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 19th अमेंडमेंट ऑफिशियली सर्टिफाई हुआ, जिसके बाद औरतों को वोटिंग के राइट्स मिले। और इस मूवमेंट के पीछे बहुत सालों की स्ट्रगल थी। वुमेन एक्टिविस्ट ने पब्लिक मीटिंग्स की, स्पीचेस दिए, पेटिशंस ऑर्गेनाइज की और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए बहुत कैंपेन किया। ये हिस्ट्री में हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। राइट्स जो आज हमें बिल्कुल भी नॉर्मल लगते हैं, उनके पीछे अक्सर जनरेशंस की मेहनत होती है। और अब बात करते हैं इंडिया में 26 अगस्त जेंडर इक्वालिटी और वुमेन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एक मीनिंगफुल डेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है मदर टेरेसा से। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे में हुआ था, जो उस वक्त ऑटोमान एम्पायर के अंदर था। बाद में उन्होंने इंडिया को अपना कर्म भूमि बनाया। उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में डेडिकेट किया। 1979 में उन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला। उनकी लाइफ और दुनिया दोनों में ह्यूमैनिटेरियन सर्विस की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी बन गई। 26 अगस्त को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में भी याद किया गया। तो मदर टेरेसा जब आए थे, तब उनका प्राइमरी फोकस था एजुकेशन, सोशल सेक्टर था। कोलकाता में उन्होंने पूरे कम्युनिटीज के साथ काम किया और बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी एस्टैब्लिश की। उनका काम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सेंटर्स दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में एस्टैब्लिश हुए। उनकी लाइफ को लेकर ओपिनियंस और डिबेट्स भी रहे हैं कि, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल पर देखा जाए तो उनका नाम 20th सेंचुरी के मोस्ट रिकग्नाइज्ड ह्यूमैनिटेरियन फेसेस में जरूर आता है। और 26 अगस्त की उनकी बर्थ एनिवर्सरी की वजह से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट बन गया है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं ये डिस्को डांसर का फिल्म का ये बेहतरीन गीत, जिसका नाम है जिमी जिमी, जिसे गाया है पार्वती खान ने।

दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। और एक बार फिर से वुमेन्स इक्वालिटी पर लौटते हैं। हिस्ट्री में वुमेन को वोटिंग राइट्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ही लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी। आज हम इलेक्शंस में वोट देते हैं, एजुकेशन परस्यू करते हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस में काम करने को हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये राइट्स हर सोसाइटी में ऑटोमेटिकली नहीं आए थे। इंडिया भी वुमेन्स पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी का जर्नी काफी लंबा रहा है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वुमेन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किए, जैसे कि सरोजनी नायडू, एनी बेसंत, अरुणा सैफ अली और कस्तूरबा गांधी जैसे नाम हिस्ट्री के बुक्स में प्रोमिनेंटली शामिल है। वुमेन के प्रोटेस्ट ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया, इसलिए 26 अगस्त का ग्लोबल कनेक्शन हमें एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछने का मौका देता है। क्या सोसाइटी तभी ट्रूली प्रोग्रेस करती है जब उसके सभी मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं? तो 26 अगस्त को दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल, 26 अगस्त 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन अडॉप्ट की गई थी। ये डॉक्यूमेंट मॉडर्न ह्यूमन राइट्स और सिटीजनशिप के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। इस डिक्लेरेशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स जैसे आइडियाज को पॉलिटिकली डिस्कशन के सेंटर में लाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी हमें बताती है कि जब सोसाइटीज इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक प्रेशर्स और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेजर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोनों हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दो डेट्स तो सिर्फ वो डेट्स ही नहीं होते, हर डेट के पीछे तो अलग अलग कहानी होते हैं, उनके डिसीजंस होते हैं, वो दिन का स्ट्रगल्स होते हैं, उनकी विक्ट्री और उनकी हार जीत। तो 26 अगस्त में वुमेन्स इक्वालिटी के मूवमेंट से लेकर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस और ह्यूमन राइट्स के आइडियाज तक कई डिफरेंट कहानियां कनेक्ट करती हैं। और हिस्ट्री को याद करने का पर्पस सिर्फ एग्जाम डेट्स याद रखना नहीं है। हम हिस्ट्री हमें समझाती है कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है। और अगर हम हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के और इंडिया को साथ में देखें तो एक कॉमन थ्रेड नजर आता है, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी। इंडिया में सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, वुमेन एजुकेशन और सोशल इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज को चैलेंज किया। दुनिया के अलग अलग देशों में भी सिविल राइट्स है, वोटिंग राइट्स है, इक्वालिटी के लिए मूवमेंट लेकर आए हैं। हर देश का हिस्टोरिकल जर्नी अलग रहा है, लेकिन बेसिक ह्यूमन के एस्पिरेशंस बहुत ही सिमिलर रहे हैं, रिस्पेक्ट, फ्रीडम और बेटर अपॉर्चुनिटीज।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार, आकाशवाणी ईटानगर का RNFM 103.1 MHz।

0: si Akasvani tanagar station na sarungul ko tagin program ko gila yun yung abin tamgin na si Rajiv Rai. National Security Advisor wala India-China boundary ko isandong ruklo. Special Representative rin na Ajit Doval Muyo, People's Republic of China ka Vice President Jan Jeng Han Jeng ni karak sula gama ko rorik birik sula di ganyo ko bala mifado ko. So, Jamula Lunguna na ba Special Representatives dong pa mga Beijing lo dong rap made ga atoya ba sakene gama nga rorik sucho do kunela. Sucho do kune Embassy of India nga Beijing loka social media post lo bimfalendo ko. So, moko anga agumana nga ribosang bo min sumato ko ba are ne achok ba border area lo ribosang bo min sumato ba nga mga rorik birik sulari ganyo ko bala bimfalendo ko. So, ago lo bilateral relation, economic, political, ok multilateral nga ribam sang bam do kubala nga mga rorok sudo gan kubala me falin do ko. Union Power Minister Manohar Lal mayo New Delhi ga Sram Shakti Bhavan lo Northeastern State lo Energy Sector lo dongpam ko ni dongpam gan kubala me fado ko. So ga dongpam sang Arunachal Pradesh ga Deputy Chief Minister Chona Men Meghalaya ga Power Minister Mitwa Lingdo nila Mizoram ga Power Minister F Roding Liana na ni Dongbam gan kubela me falin duko. So ga Dongpam so Deputy Chief Minister ni me Chona Men ni me Arunachal Pradesh law 132/33 kV substation Kimin Dongrik Loka Lilo lines pelelo gama nga rorik birik sulari ganyi kubala mifalin doko. Arunachal Pradesh ga Governor Lieutenant General K.T. Farnaik state lo dong na Kerala lo nyi dadanga alabakela mifadoko. Sekena Onam Festival aloso state lo nyi mananga Governor ni mi alabadong nyata kela greetings ko jilin nari doko. Sekena Onam Festival sobam kunam loke ni menang nga alaba sengmuri mu yakudi mang dokune la governor ni mige message fatalo mi fada doko. Dibang Valley District Deputy Commissioner Yaswant Mina ga chairmanship aralo District Planning Committee ga meeting dongpam kunyi aninilo dongpam gain kubela mi falin doko. So ko dong pamsom gram panchayat development plan ngala jila forested development plan 2026-27 ayang nanga tulog jila kula di ganyan ko bala may fado ko. So dong pamsom DC ni may panchayat leader de nga may fako nam nga gumaleng nga development rinamsang namsom nampam lo ni man nga welfare lakang bar inyasang niya takela dongkom na dadanga di sini mi tamsar kinula rigini kuba. Roing lo orientation program on Beti Bachao Beti Parao initiative ga aralo ka Panchayat Raj institution member dadanga Dibang Valley district ga DC conference hall lo kilo ga Monday alo lo dongpam ga gani kuba la mi fado ko. So ga dongpam so PRI member Changu Lele guna dongbam do kula beti bachao beti farao phelelo gama nga tamsar kinu lakula riganyu kubala me falen do ko. Meteorological center Itanagar loko me fa khunam nga Arunachal Pradesh ga Pampare district nga ventakla at state lo ringula angu district lo yellow alert go weather report nga khatamla nidonga achala ba hole campela me falen do ko. So district mo ko guna lo dogum doryak ang takla ni donga achala ba holik te dula mi falin do ko sru ga tagin ga ma yung bin tamsang ka herbo.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार में स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और लेकर आई हूं आज के लिए वेदर अपडेट्स और खास तौर पर ईटानगर कैपिटल रीजन पापम्पारे और अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों के। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटानगर और ईटानगर कैपिटल रीजन की। 26 को दोस्तों आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन के दौरान बारिश के स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ समय बारिश हल्की हो सकती है, लेकिन मॉनसून क्लाउड्स एक्टिव होने पर अचानक से तेज बारिश भी हो सकती है। ईटानगर में अगस्त के दौरान तापमान आमतौर पर गर्म और ह्यूमिड रहता है। करंट फोरकास्ट सोर्सेस के हिसाब से 26 अगस्त के आसपास तापमान रफली 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहने की संभावना है। इसलिए अगर आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट साथ रखना है, तो वही अच्छी प्रिपरेशन होगी। और अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आप गीली सड़कों पर थोड़ा सा केयरफुली चलाइए। अब बात करते हैं दोस्तों पापम्पारे डिस्ट्रिक्ट की। पापम्पारे में 26 अगस्त को बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी बना हुआ है। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 26 अगस्त को हैवी बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का वार्निंग दिया है। पापम्पारे और सराउंडिंग हिल एरियाज में कंटिन्यूस बारिश के बाद रोड स्लिपरी हो सकते हैं, कहीं कहीं वाटर लॉगिंग हो सकती है और हिली रोड्स पर विजिबिलिटी भी टेम्पोरेरिली कम हो सकती है। तो अगर आप नाहरलगन, ईटानगर या पापम्पारे की कई और एरिया में ट्रैवल कर रही हैं और वेदर और रोड कंडीशंस को आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए मानसून एक्टिविटी भी अभी भी एक्टिव है। आईएमडी ने 25 अगस्त की बुलेटिन में 26 को हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी की वार्निंग दे दी थी। ये अनसेटल्ड वेदर आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि 27 अगस्त को भी बहुत ही हैवी बारिश और थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी है और उसके बाद के दिनों में भी काफी हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट दिया है। रिसेंट फोरकास्ट में भी अरुणाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना बताई गई है, खास तौर पर 25 और 26 अगस्त के आसपास। मतलब दोस्तों, अभी भी मानसून ब्रेक लेने का मोड में नहीं है, तो इसलिए स्टेट के पहाड़ी इलाकों, लो लाइंग एरियाज और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार का पहला गाना।

दोस्तों आइए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करते हैं और वो टॉपिक है लैंडस्लाइड्स। अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से हैवी बरसात के कारण कुछ हिल्स और स्लोप्स लैंडस्लाइड प्रोन हो सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और किसी रोड के पास पहले से लैंडस्लाइड हुआ है तो बिना जरूरत के उस एरिया में रुकने की कोशिश भी ना करें। रोड के बिल्कुल एज पर व्हीकल पार्क ना करें और अगर हिल स्लोप से छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी गिरते हुए दिखाई दे तो उस जगह से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर रोड खुल गया होगा तो अज्यूम करके ब्लॉक्ड या अनसेफ रूट पर ट्रैवल मत कीजिए। रोड कंडीशंस बदलने में बहुत ही कम वक्त लग सकता है। तो 26 अगस्त को थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग का रिस्क बिल्कुल है। अगर आप ओपन एरियाज में लाइटनिंग के साथ थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो जाए तो सेफ एनक्लोज्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाए, पेड़ के नीचे खड़े होने से बचे, ओपन फील्ड और एक्सपोज्ड एरियाज में अननेसेसरी रुकने से बचे और बारिश के वक्त आउटडोर एक्टिविटीज को पोस्ट

फोन करना तो बेहतर ही है। बादल गरजने और लाइटनिंग दिखे तो सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। तो यही था दोस्तों आज का सदाबहार कार्यक्रम, जहां हम आपको दे रहे थे वेदर रिपोर्ट इटानगर कैपिटल रीजन और पापम पारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार भारत मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
4: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
6: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों

0: को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू

0: होंगी। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स वन ईयर डेडलाइन फॉर 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Miladun Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Tiru Onam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
4: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. During the meeting, ministries and states were asked to adopt an end-to-end approach and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. Mr. Modi also called for fostering a proactive work culture across ministries and state governments with greater ownership at every level of project implementation. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
3: Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said the move will enable disposal of criminal cases up to the Supreme Court within 3 years and raise the conviction rate by 25%. More from our correspondent.
5: Mr. Shah said India must further strengthen its internal security to emerge as a leader in every sector. Home Minister said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047, and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, nexalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said government has eliminated the former challenges across these three internal security hotspots, and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. He said over the past 8 months he visited all states sharing land borders and shared a document outlining a quadrilateral border security approach with them. With Anupam's report, Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
3: Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. A report.
6: The Delhi government has informed that more than 913,000 women have registered

नमस्कार अरुणाचल प्रदेश, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर, जहां हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, हमारे स्टेट की कल्चर, ट्रेडिशंस और कम्युनिटीज और उन मुद्दों की जो हमारी आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आज का टॉपिक बहुत ही खास है, जिसे हम कहते हैं हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश, जो बहुत ही कल्चरली डाइवर्स स्टेट है। ये यहाँ पर अक्सर उसकी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, उसकी नदियाँ, जंगल और डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जानते थे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कल्चरल वेल्थ सिर्फ हमारे लैंडस्केप्स में ही नहीं, हमारी लैंग्वेज और डायलैक्ट्स ही हमारा आइडेंटिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आज हम बात करेंगे ट्राइबल रिसर्चर्स, डॉक्टरेट स्टूडेंट्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के रोल के बारे में, खास तौर पर उन ट्राइबल डायलैक्ट्स के प्रिजर्वेशन में जिनके पास अभी तक कोई रिटन स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो दोस्तों, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, एक लैंग्वेज का के अंदर एक कम्युनिटी की खास हिस्ट्री होती है, उसके ट्रेडिशनल ज्ञान, फोक कहानियां, गाने, फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कोई दवाई के नॉलेज, रिलेशनशिप्स, बिलीफ्स और दुनिया को देखने का अपना एक यूनिक नजरिया। सोचिए, अगर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज करना ही बंद कर दे तो धीरे धीरे क्या होगा? कुछ वर्ड्स गायब हो सकते हैं, कुछ कहानियां याद रहना बंद हो जाती हैं और कुछ भाषा जो है वो एल्डरली मेंबर्स तक ही सीमित हो सकती है, और अगर उन्हें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो एक दिन वो नॉलेज हमारे पास सिर्फ फ्रेगमेंट्स में ही रह जाएगी। इसीलिए लैंग्वेज

कम्युनिकेशन और रिसर्च के लिए लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट करना यूजफुल हो सकता है और यही रिसर्चर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी कम्युनिटी के रिसर्चर अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ओरल ट्रेडिशंस पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके पास एक स्पेशल एडवांटेज होता है। वो सिर्फ अपने लैंग्वेज का स्टडी नहीं कर रहा होता, वो उस लैंग्वेज का एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है और वो लोकल एक्सप्रेशंस, कल्चरल रेफरेंसेस, ट्रेडिशनल मीनिंग्स को बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी के रिसर्चर्स ही रिसर्च करें। बाहर के स्कॉलर्स, लिंग्विस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी अपने वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट तो तभी मिलेगा जब कम्युनिटी के मेंबर्स, ट्राइबल रिसर्चर्स, लिंग्विस्ट, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करें। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। चलिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

करके उसे कुछ एक रिटर्न स्क्रिप्ट मिला ना, तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही नहीं, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स है वो उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो किसी कम्युनिटी के टीचर, राइटर, जर्नलिस्ट, कल्चरल वर्कर या लैंग्वेज एंथुसियास्ट भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कर सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, रिसर्च कम्युनिटी के साथ मिलकर होनी चाहिए, कम्युनिटी के ऊपर नहीं। अगर कोई रिसर्चर किसी गांव में ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है तो लोकल एल्डर्स और स्पीकर्स की परमिशन लेना भी बहुत ही जरूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि रिकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, और कम्युनिटी को भी रिसर्च का बेनिफिट मिलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबसे पहला स्टेप हो सकता है फंडिंग और रिसर्च ग्रांट्स का। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के लिए स्पेशल ग्रांट एस्टैब्लिश कर सकती है अरुणाचल के इंडिजीनियस लैंग्वेज और डायलेक्ट्स पर रिसर्च करना चाहते हैं। यंग ट्राइबल रिसर्चर्स के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी क्रिएट किया जा सकता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को अपने ही कम्युनिटीज और लैंग्वेज पर सीरियस एकेडमिक रिसर्च करना का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब आते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पर। अगर किसी लैंग्वेज का रिटन स्क्रिप्ट है ही नहीं तो क्या किया, क्या उसके लिए नया स्क्रिप्ट डेवलप किया जाना चाहिए? इसका आंसर तो सिंपल नहीं है। स्क्रिप्ट डेवलप करना एक लिंग्विस्टिक डिसीशन के साथ साथ कल्चरल डिसीशन भी हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट या कोई आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को बिना कम्युनिटी कंसल्टेशन के एक स्क्रिप्ट इम्पोज नहीं करना चाहिए। पहले लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स, कम्युनिटी के एल्डर्स, यंग टीचर्स, यंग स्पीकर्स, रिसर्चर्स और लिंग्विस्ट को साथ बैठकर डिस्कशन करना चाहिए। कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। कुछ कम्युनिटीज एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को अडेप्टेड फॉर्म यूज कर सकते हैं, और कुछ कम्युनिटीज फ्यूचर में अपना स्टैंडर्डाइज्ड राइटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहता है, और कुछ कम्युनिटीज प्राइमरीली ओरल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने पर फोकस कर सकती है। एक ही सोल्यूशन है कि सब लैंग्वेजेस पर अप्लाई तो नहीं हो सकता। आज टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए भी एक पावरफुल टूल बन सकती है। स्मार्टफोन से हाई क्वालिटी के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स पॉसिबल हैं। डिजिटल डाटाबेसेस बन सकते हैं, और इमेजिन कीजिए फ्यूचर में अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेजेस की डिजिटल डिक्शनरीज अवेलेबल हों, स्टूडेंट्स फोन पर अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स को सर्च कर सके और यंग पीपल ट्रेडिशनल स्टोरीज ऑडियो फॉर्मेट्स में सुन सके। टेक्नोलॉजी अगर कम्युनिटी के कंट्रोल और कंसेंट के साथ की जाए तो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि लैंग्वेज किसी म्यूजियम की ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लिविंग थिंग है। इसे रिसर्चर्स को सिर्फ डाटा कलेक्ट करके थीसिस सबमिट कर देना इनफ नहीं है। रिसर्च का रिजल्ट कम्युनिटी तक वापस जरूर जाना चाहिए, और अगर किसी रिसर्चर्स ने एक ट्राइबल लैंग्वेज को डिक्शनरी प्रिपेयर किया है तो उसका एक एक्सेसिबल वर्जन कम्युनिटी स्कूल्स और लोकल लाइब्रेरीज को भी मिलना चाहिए। तो रिसर्च का पर्पस सिर्फ डिग्री नहीं है, नॉलेज को प्रिजर्व और शेयर करना भी चाहिए। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम हेलो इटानगर यहीं पर समाप्त होता है। तो लेकिन जाने से पहले मेरे यंग लिसनर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है। अगर आप अपनी मदर टंग को बोलते हैं तो उसे बोलने में प्राउड फील कीजिए, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनिए, उनसे ट्रेडिशनल कहानी पूछिए, और ओल्ड सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने से पहले उनकी परमिशन लीजिए। अपने पेरेंट्स से फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए, और अपने रिसर्च आप रिसर्चर्स ना भी हो फिर भी अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी कभी प्रिजर्वेशन का फर्स्ट स्टेप सिर्फ इतना ही होता है, अपने लैंग्वेज को यूज़ करना। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपने मिट्टी से जुड़े रहिए, अपनी भाषा को जिंदा रखिए, और अपनी आइडेंटिटी पर गर्व कीजिए।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमरीका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
4: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
2: कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at the 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
6: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
5: Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Dobhal highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Dobhal was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. In a statement, the External Affairs Ministry said that the two special representatives had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question. Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, that is 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on 11th August and in the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Kerala is across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. Thiruvonam celebrations began with Onapukkalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary King Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste and religion. Eid-e-Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is being celebrated with religious fervor in various parts of the country today. Milad mehfils and Seerat conferences will be held, highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Milad processions are also being taken out to mark the occasion. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the countrymen on the occasion of Onam and Milad-un-Nabi. In a social media post, Mr. Modi expressed hope that this occasion furthers togetherness and joy all around the world. He wished that the spirit of kindness and giving back to the society always guide the countrymen. And on to sports. Indian Grandmaster R. Pragyanand cruised into the finals of the Grand Chess Tour's last leg after a 19-9 win over Germany's Vincent Kemmer in St. Louis, U.S. Having won the second classical game, the Indian enjoyed a huge lead of 6 points coming into the final day on which games of shorter duration were played. Pragyanand will take on pre-event favorite and defending champion Fabiano Caruana of the U.S. in the event finale. And that is the end of this news bulletin.
0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों आइए आपको ले चलें आज के हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है फिल्मी गपशप। तो दोस्तों कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये बेहतरीन गीत। इस गीत के साथ आइए आपको और अपडेट्स दे दो फिल्मी दुनिया की ओर।

0: हाँ डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?
1: बाप साले। When the son is in love, the father just knows.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप, जहां फिल्मों की दुनिया की लेटेस्ट खबरें, थिएटर की अपडेट, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लेकर आते हैं आप तक। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, और अगर आप सिनेमा के फैन हैं तो आज का सेगमेंट बिल्कुल आपके लिए है। तो पॉपकॉर्न को रेडी रखिए, रिमोट को थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वक्त थिएटर्स में क्या चल रही है, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, बॉलीवुड में बस क्या है, और नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम वीडियो पर क्या क्या नया देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिल्मी गपशप। सबसे पहले बात करते हैं एक फिल्म की जो अभी थिएटर्स में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है, और वो है आवारापन 2। इमरान हाशमी और दिशा पटानी स्टारर इस एक्शन ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई है। फिल्म ने अपने 12th बर्थडे तक इंडिया में रिपोर्टेडली 142 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन क्रॉस कर लिया है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 200 करोड़ के आसपास। तो अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं और थिएटर्स में एक्शन ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो आवारापन 2 अभी भी बिग स्क्रीन ऑप्शंस में से एक है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े रिलीज की। 26 अगस्त को यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक, अ फैरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स थिएटर्स में रिलीज हो रही है। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत नजर आएंगे। फिल्म को गीतू मोहन दास ने डायरेक्ट किया था, और ये गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है। एडवांस बुकिंग को लेकर भी काफी बज है, कुछ शहरों में डिमांड्स के चलते एडिशनल शोज ऐड किए गए हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टॉक्सिक को CBFC से ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी एडल्ट के लिए सर्टिफाइड फिल्म है, इसलिए थिएटर्स जाने से पहले अपने लोकल सिनेमा लिस्टिंग पर सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें। तो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा फैंस के लिए 26 अगस्त का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थिएटर्स में एक और हिंदी फिल्म है जो अभी भी चल रही है, वो है बटवारा 1947। सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे एक्टर से सजी ये पीरियड ड्रामा राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी, और अभी कुछ सिनेमास में स्क्रीनिंग्स अवेलेबल है। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास और पार्टीशन के बैकड्रॉप्स में स्टोरीज पसंद है, तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में आ सकती है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: country's first long distance calling card, Keith. उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं.
1: Excuse me, sir. India में आपको calling cards का idea कैसे आया?
2: दोस्तों इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं फिल्मी गपशप के कुछ खास खबरें. और अब एक सैड पीस ऑफ न्यूज भी है बॉलीवुड से. वेटरन फिल्म मेकर कुकू कोहली, जो फूल और कांटे जैसे फिल्म्स के डायरेक्टर रहे और अजय देवगन के करियर के अर्ली फेज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनका 77 एज में आज ट्यूजडे इवनिंग को देहांत हो गया है. उनका बॉलीवुड में एक लंबा करियर रहा और उन्होंने 1990s की हिंदी सिनेमा में अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई. सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक वेटरन फिल्म मेकर को याद करने का मोमेंट है. तो दोस्तों चलिए अब ओटीटी थिएटर से सीधा ओटीटी की दुनिया में चलते हैं. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तो एक टाइटल जो अभी काफी अटेंशन ले रहा है वो है ऑपरेशन सफेद सागर, द हाईएस्ट एयरफोर्स मिशन. ये 6 एपिसोड मिलिट्री ड्रामा कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की स्टोरी पर बेस्ड है. सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल और अभय वर्मा इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं. नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल पेज के अकॉर्डिंग सीरीज में 6 एपिसोड्स हैं और ये 7 अगस्त से स्ट्रीमिंग पर है. अगर आपको इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, एक्शन और रियल इवेंट से इंस्पायर्ड कुछ कहानियां पसंद है तो इसे वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया के करंट पॉपुलर शो में से मुसाफिर कैफे भी प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है. नेटफ्लिक्स के टॉप 10 चार्ट में ये करंट और पॉपुलर टाइटल्स में लिस्टेड है. तो अगर आप एक लाइटर इंडियन सीरीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये भी चेक कर सकते हैं. और नेटफ्लिक्स पर इंडियन कंटेंट की वैरायटी काफी वाइड है. प्लेटफॉर्म की करंट इंडियन कैटलॉग में क्राइम ड्रामास, कॉमेडीज, रियलिटी शोज और रीजनल कंटेंट तक काफी ऑप्शंस अवेलेबल है. तो नेटफ्लिक्स का रिमोट उठाइए और देखिए कि आपका मूड किस जॉनर की ओर है. तो चलिए आइए दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक.
3: And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
4: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
5: Bandhu! Nayi car jeetne ka mauka? Wow! पापा को सरप्राइज दूंगी. बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है.
6: रुक जा बुड्ढू.
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो. स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं.
5: तो समझ गई ना. रिलैक्स. पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते.
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो.
8: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज. क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है. चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है. वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक. पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक. जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2 लाख और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5 लाख तक के पुरस्कार हैं. तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक. जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज. अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम.

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
6: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
7: तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से कार्यक्रम फिल्मी गपशप में इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो अब चलते हैं Amazon प्राइम वीडियो की तरफ। प्राइम वीडियो पर अगस्त काफी बिजी मंथ रहा है। एक मेजर इंग्लिश लैंग्वेज रिकमेंडेशन है रीचर का सीजन 4, जिसमें एलन रिचसन वापस जैक रीचर के रोल में नजर आ रहे हैं। सीजन का प्रीमियर हुआ था अगस्त 12 को और एपिसोड्स वीकली रिलीज हो रहे हैं। अगर आपको एक्शन, मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली इंग्लिश सीरीज पसंद है तो रीचर एक स्ट्रांग ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों, प्राइम वीडियो पर एक और न्यू इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज है जिसका नाम है स्टर्लिंग पॉइंट। ये एक यंग एडल्ट मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें एक टीनेज गर्ल को एक रिमोट कैनेडियन आइलैंड इनहेरिट होता है। उसके बाद उसकी फैमिली के सीक्रेट्स और मिस्टीरियस चीजें सामने आने लगती हैं। तो सीरीज अगस्त के प्राइम वीडियो लाइनअप का हिस्सा है। तो अगर आपको मिस्ट्री के साथ साथ कमिंग ऑफ एज टाइप थोड़ा स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये बिल्कुल आपके लिए है। रीचर सीजन 4 और स्टर्लिंग पॉइंट आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पर। और अगर हिंदी की कंटेंट बात करें तो प्राइम वीडियो पर गवर्नर द साइलेंट सेवियर भी अगस्त में स्ट्रीमिंग पर आई है। इस पॉलिटिकल थ्रिलर में आप देखेंगे मनोज बाजपेयी, आधा शर्मा और मधु जैसे एक्टर्स को। फिल्म अगस्त 7 से प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो हिंदी सिनेमा लवर्स के लिए प्राइम वीडियो पर ऑप्शंस की कमी है ही नहीं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे आप सुनेंगे लकी अली की आवाज में।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात।
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: निपटने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव कल से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है। दोनों देशों ने कहा इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वार्ष्णिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह 6वीं बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन्नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 4थे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेल रहा है। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at the 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far, and over 6,52,000 applications have been finalized.

0: की सपोरी से जो कि असम के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को डेडिकेट किया ये गीत भाईकॉन अमल रमेश रुनू पात्रो अंजलि बसुमतारी हितेंद्र दास सभी को। तो आइए जुनाई मेसा की जी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिधान शूलं वुशुंडी शिर शंखं दंदत सिंकरैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषा कृपा

तो दोस्तों आइए बिना रुके चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश आई है हमें सुनीता बसुमतारी से, जो कि असम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये गीत को अपने दोस्तों को डेडिकेट किया है। तो इस गीत का नाम है प्यार तुझे है मुझसे, जिसे गाया है उदित नारायण ने अपनी सुरीली आवाज में। तो चलिए सुनते हैं सुनीता बसुमतारी जी की फरमाइश पर।

चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला फरमाइश है, ये बहुत ही प्यारा सा फरमाइश है, ये एक संदेश है किसी प्यारे से बॉयफ्रेंड से और उसके गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये अगला सॉन्ग है जीने के है चार दिन फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी, और इसे फरमाइश की है हितेंद्र दास ने अपनी इसे डेडिकेट किया है देवशीष हजारिका ने, जो कि माजुली असम के रहने वाले हैं। उन्होंने डेडिकेट किया है ये सॉन्ग को अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड मोरोमी के लिए। तो मोरोमी जी, ये गीत आपको डेडिकेटेड है देवशीष जी से। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

सोनी तानदार सेंकी पार्क से, जिन्होंने सैयारा मूवी का टाइटल सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। तो सेंकी पार्क के रहने वाले आप सोनी जी, शायद आपका नाम सोनी है, तो लीजिए, पेश है आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रुता, अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है हमें बहादुर जी से, जो कि मुकुचुंग के रहने वाले हैं। उन्होंने ये गीत की फरमाइश की है, जिसका नाम है कितनी हसी रात, जो है सैनिक फिल्म से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओ, आइए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। अगला फरमाइश भी बहुत ही प्यारा सा फरमाइश है। ये हमें आया है असम के रहने वाले प्रिय बोरो जी से। तो प्रिय बोरो जी ने इस गीत को डेडिकेट किया है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और इस गीत का नाम है बस तुम मेरे पास रहो, और इसे डेडिकेट किया है बॉयफ्रेंड सुनील बोरो को। तो सुनील जी, अगर आप सुन रहे हैं तो ये प्यारा से गीत आपको डेडिकेटेड है प्रिय बोरो की तरफ से।
6: जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में, हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

तो श्रोताओ आइए चलिए बढ़ते हैं हमें हमारे अगले फरमाइश की ओर। और अगला फरमाइश हमें आया है ये जोगेंद्र रोंगपी सोनाली रोंगपी और इंगतिपी रोंगपी और धर्मकिरी रोंगपी से, जो कि कार्बी अंगलोंग असम के रहने वाले हैं। उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। इस गीत का नाम है ये मौसम भीगा भीगा।

दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जिसे हमें ये फरमाइश हमें आई है रमेश पात्रों से, रोनू पात्रों और लकी पात्रों से, जो कि गोलाघाट आसाम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये इस गीत की फरमाइश की है, हमें हमें तुमसे हुआ प्यार।

श्वेता, आइए आपको बता दूं कि हमारा रेडियो ऑन डिमांड का सेगमेंट आज यहीं पर समाप्त होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी फरमाइश जो है या फिर आप हमें कल भी भेज सकते हैं। कल

0: आपकी फरमाइश इसी वक्त इस कार्यक्रम में आप सब तक पहुंचेगी। अगर आप और भी हमें फरमाइश भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। नंबर है 9436887808 पर। नंबर दोबारा रिपीट कर दूं, नंबर है 9436887808 पर। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हमारी आज की पहली प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ आज के इस प्रसारण सभा में आरजे लूसी, और हमारे आज के कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गेर अत तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो आप सभी को बता दो कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा जारी रहेगी, आपके साथ आरजे अपर्णा होगी और वो आरजे अपर्णा स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, शुभ दिन, नमस्कार। दोस्तों आइए सुनते हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
4: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले 1 वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
6: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल बीजिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह छठी बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे को भरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम्मा भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल से खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से पराजित किया। वहीं फाइनल मैच में प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच मैच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply. A report.
8: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics, and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as U.S. tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match U.S. level.

दोस्तों आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। आप सभी का हमारे स्टूडियो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि वक्त सबको बदल देता है, लेकिन सब्र रखने वाले को सबसे खूबसूरत तोहफा देता है। आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी दूसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता नंद कुमार तथा स्टूडियो और एचपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा आप सभी का आज के इस दूसरे प्रसारण सेवा में तहे दिल से स्वागत करती है। अब से बस कुछ ही देर में हम आपके लिए पेश खिदमत करेंगे लहरों का लहर, फिल्मी लहर प्रोग्राम। लेकिन इससे पहले हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे लूसी का, जिन्होंने अपनी पहली ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी की भरपूर मनोरंजन की है। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि अब से लेकर शाम के ठीक 4:25 तक आप सभी के दिन को हम जो है भरपूर एंटरटेन तथा खुशनुमा बनाने

0: की बेहद कोशिश करेंगे दोस्तों। बहरहाल अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे लहरों का लहर फिल्मी लहर के साथ।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Bandhu! नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुड्ढू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

दोस्तों, सिनेमा घरों में 23 से 24 हफ्ते सफल चलने के बाद आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के दौरान सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और प्रतिबंध हटाया गया। निर्देशक गुलजार ने हमेशा ये साफ किया कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की जीवनी नहीं थी। उन्होंने बताया कि आरती देवी का लुक और व्यक्तित्व, इतिहास और इंदिरा गांधी और पटना के प्रसिद्ध सांसद तारकेश्वरी सिन्हा से प्रेरित था, ना कि ये इंदिरा गांधी से प्रेरित था, लेकिन कहानी पूरी तरह से काल्पनिक थी। जी हाँ, सुचित्रा सेन जो कि उस वक्त की सुपर डुपर बंगाली अभिनेत्री थी। कहा जाता है कि गुलजार ने ये फिल्म सिर्फ इनके ध्यान में रखकर, सुचित्रा सेन को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। उनका कहना था कि अगर सुचित्रा सेन इस फिल्म के लिए मना कर देती तो ये फिल्म शायद बनाते ही नहीं। इस फिल्म में लगभग सुचित्रा सेन ने इसके बाद, यानी कि फिल्म आंधी के बाद, सुचित्रा सेन ने लगभग, कहते हैं कि हिंदी फिल्मों से दूरी ही बना ली थी। इसके गीत और संगीत भी बहुत ही खास है। दोस्तों, एक और गीत मैं आप सभी को सुना दूं।

दोस्तों, आरडी बर्मन का संगीत, गुलजार के लिखे बोल और किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज ने फिल्म के गानों को जैसे तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, जो कि मैंने अभी आप सभी को सुनाया, और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, इन सभी गानों को, इन सभी गीतों को सदा बहार बना दिया। फिल्म का एक बेहद मशहूर संवाद है कि अगर आप शायर ना होते तो बड़े ही ऑर्डिनरी होते। गुलजार की वास्तविक जिंदगी से जुड़ा था यह डायलॉग, जो कि उनकी पत्नी राखी ने कभी उनसे कहा था। तो ये बहुत ही फेमस फिल्म रही अपने दौर की। अगर आपने इस फिल्म को अब तक नहीं देखा है तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा दोस्तों। और जी हाँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिल्मी लहर प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, ये आप हमें अपनी राय और कैसा चाहते हैं इसे हम आपके लिए सजा कर पेश खिदमत करें, इसके बारे में जरूर हमें लिख भेजिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम होता ही है आपकी बात आकाशवाणी के साथ लिसनर्स रिएक्ट्स। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9436887808 पर और अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलते चलते इसका जो बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग जो कि दिल को छू लेता है, वो मैं पेश खिदमत करते हुए जा रही हूँ, यानी कि इस प्रोग्राम को संपन्न कर रही हूँ। एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारी आज की फिल्मी लहर प्रोग्राम अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। आप आनंद उठा रहे हैं एफएम बैंड की 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुण एफएम को, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम पेशे खिदमत करेंगे हमारा पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: Good morning, dear listeners, and welcome to Akashvani Itanagar. You are listening to Western music, where we will enjoy some of the world's most loved songs together. And I'm delighted to have your company, so let's begin today's musical journey. Our first song is Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. It's a smooth and emotional song with a beautiful pop sound.

0: तो दोस्तों आप आनंद उठा रहे थे, जी हाँ फ्रेंड्स, वेस्टर्न मेलोडीज के प्रोग्राम से, और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा था, जी हाँ, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि दोपहर के ठीक 12 बजे से लेकर 12:10 तक का वक्त रहेगा बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार का, जिसे दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। अब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP.

0: and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया है।
3: हाँ, जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: Attention, Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
8: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bank to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
9: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
10: दी, ये देख कैसे।
11: हैप्पी बर्थडे भाई।
10: दीका,
12: हाँ मेरा फेवरेट कलर
11: हमेशा शॉपिंग।
13: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
14: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
15: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
16: आई नो ना।
15: आरबीआई कहता है
17: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
18: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर

0: पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, अभी आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुन रहे थे, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, वो कहते हैं ना, वो काम भला क्या काम हुआ, जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसकी दरकार इजाजत हो। दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक नॉन हिंदी फिल्म गीतों के साथ, यानी कि एल्बम सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: ओके सैलरी, नए झुमके ना, पहले बचत,
6: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमकों का क्या,
5: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
6: Oh yeah, it's the one that we're not selling, y'all. Demon in the house, coming with the new funk. Call it what you

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट परिचय, और इसके तहत आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ निशी ट्राइब्स FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा गुड्डू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

दोस्तों, इस बेहद धुआंधार गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में, यानी कि दोपहर के ठीक 1 बजे से लेकर 1:10 का वक्त रहेगा बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार का। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. India has rejected the references in the report of UN Committee on the elimination of racial discrimination, terming them politically motivated and highly malicious. In response to media queries on the committee's report following India's 11th periodic review under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, ICERD, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that India participated in the spirit of constructive engagement as a routine treaty body review. The spokesperson said as a country that played a leading role in negotiating and drafting ICERD in the 1960s, India's commitment to combating racial discrimination remains unwavering. During the review, India highlighted its constitutional safeguards, robust legal framework, pluralism and sustained efforts to protect disadvantaged communities. India has asserted that the immediate priority of the United Nations Security Council must be to take steps to mitigate the humanitarian consequences of ongoing hostilities. Addressing a Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council's role in mitigating global and local food crises, India's permanent representative to the UN, P. Harish, called for safe, rapid and unimpeded humanitarian access as well as support for effective deconfliction arrangements. He further urged the Security Council to ensure that its measures, including sanctions, do not inadvertently impede humanitarian assistance or legitimate food and agricultural trade. He noted that disruptions to energy markets, fertilizer supplies, maritime transport, humanitarian logistics and agricultural trade have demonstrated that regional conflicts can threaten food security across the world. The Indian envoy, however, underlined that building resilient and food-secure societies remains primarily the responsibility of national governments supported by the UN development system and the Rome-based agencies rather than the Security Council. Keralites across the globe are celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. Our correspondent reports Thiruvanam celebrations began with Ona Pukalam, a traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of

0: दोस्तों, अभी आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुन रहे थे, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, वक्त हो चला है हिंदी क्लासिक म्यूजिक यानी कि 60 से लेके 80 के दशक में जो सुपर डुपर क्लासिक मूवीज बने हैं, उन्हीं में से किसी एक मूवीज के बारे में ढेर सारी बात करेंगे और आपको सुनाएंगे बेहद प्यारे प्यारे गीत। लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर ₹5,00,000 तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
5: हाँ।

0: हजार बच गए
1: तो नई साड़ी ले ले
0: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक से, यानी कि आज हम आपको 60s टू 80s के बीच के सुपरहिट फिल्म्स के कुछ सॉन्ग्स प्ले करेंगे और बातें भी करेंगे। लेकिन मैंने सोचा है कि आज मैं एक ही फिल्म के कुछ सॉन्ग्स प्ले करूंगी, अपने वक्त की आइकॉनिक फिल्म, जो आज भी इसके जो सॉन्ग्स है बिल्कुल ट्रेंडिंग हैशटैग इंस्टा और फेसबुक की शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी के बारे में बात करूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं फिल्म अभिमान के बारे में। 1973 में बनी हिंदी भाषा की ये फिल्म जो है, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी और बिंदु है, ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित और सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के द्वारा गाए हुए गीत तथा सचिन देव बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किए हुए ये जो गीत है आज भी बेहद पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं इस फिल्म के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगी और जो है मैं सुनाऊंगी बहुत प्यारे प्यारे नगमों को। जी हाँ, फिल्म का एक्चुअली नाम जो है, शूटिंग शुरू होने से पहले इस फिल्म का नाम था राग रागिनी, जिसे बाद में बदलकर अभिमान कर दिया गया था। एक्चुअली ये फिल्म जो है ईगो बेस्ड, यानी कि अभिमान आप सब तो जानते ही है इसका मतलब क्या है, उसी पर बेस्ड है। तो ये फिल्म ईगो बेस्ड फिल्म भी है, जहां पर पति पत्नी के बीच ईगो आ जाता है और उसी के चलते हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं। चलिए पहला गीत मैं पेशे खिदमत करती हूँ, एंजॉय कीजिए।

माना जाता है दोस्तों कि इस फिल्म ने उस समय प्रकाशित बॉलीवुड व्यापार पत्रिका के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया। जया बच्चन ने अभिमान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अगर हम कहें तो ये माना भी जाता है कि अलिफ सुरती के अनुसार, वो कहते हैं, अलिफ सुरती कहते हैं कि ये फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो दिग्गजों यानी कि सितार वादक रविशंकर और सुरबहार वादक अन्नपूर्णा देवी के मुश्किल भरे वैवाहिक जीवन पर आधारित है। हालांकि लेखक राजू भर्तन का कहना है कि मुखर्जी ने फिल्म की कहानी गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुर के जीवन पर आधारित थी। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि जो है ऋषिकेश मुखर्जी ने कभी नहीं की। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तो ये जो फिल्म है ये अमिया बैनर के नाम से यानी कि इस बैनर के तहत ये फिल्म को फिल्माया गया और ये माना जाता है कि अमिताभ यानी कि अमित और जया का जया नामों को मिलाकर इसे बनाया गया था। बातें करेंगे और भी दोस्तों इस फिल्म के बारे में, लेकिन हो जाए इससे पहले एक प्यार भरा गीत।

दोस्तों माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद रिलीज हुई ये फिल्म यानी कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के ठीक बाद ये फिल्म जो है सिनेमाघर में आई थी, जिसकी वजह से पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री बेहद स्वाभाविक और वास्तविक लगी। जी हाँ, और ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की सफलता के बाद ऐसी चर्चाएं थी कि जया ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था ताकि लोग ये ना समझे कि रियल लाइफ की तरह उनके रियल लाइफ में भी अहंकार या टकराव आ रहा है। तो है ना ये मजेदार बात। और इस फिल्म जो है आज भी इसके गीत जो है बहुत पॉपुलर है फ्रेंड्स, तो मैं देर ना कर

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत संगीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी क्लासिक म्यूजिक यानी कि 60s टू 80s के बीच जो आइकॉनिक मूवीज बने हैं उनके जो सॉन्ग से उनका जो ये सेगमेंट है अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अभिमान 2 भी शायद हमें देखने को मिले और हम आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को प्ले करते रहे। बहरहाल दोस्तों, एक ब्रेक लेने का वक्त आ चुका है। ब्रेक के बाद मिलेंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ,
1: फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दिखा?
7: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
8: हमेशा शॉपिंग।
9: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
10: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
11: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
12: आई नो ना।
11: आरबीआई कहता है,
13: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
14: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यही संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि अब से बस कुछ ही देर में यानी कि दोपहर के ठीक 2 बजे से लेकर 2:31 तक अब बारी बारी से मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से प्रसारित सुन सकेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: ओके सैलरी, नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
8: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
9: बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
10: गीत संगीत
11: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
10: प्यार भरे अल्फाजों में
11: दिल से दिल की बात,
10: बस आपके नाम।
11: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: India's transformation is structurally driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries, and Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

0: है बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
2: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे

0: केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे।

चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों अभी आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में मिड डे न्यूज तथा तो पर समाचार सुन रहे थे जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे स्टूडियो में। अब से बस कुछ ही देर में हम पेशे खिदमत करेंगे दोस्तों हिट्स ऑफ 90s, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिट्स ऑफ 90s के सेगमेंट में। वैसे 90s का नाम लेते ही ये अपने आप में ही बता देते

है ये खास क्यों है, क्योंकि ये वो दौर था दोस्तों जहां पर, जिस दौर पे ना केवल सुपर डुपर स्टार्स मिले बॉलीवुड को, बल्कि अच्छे से अच्छा सिंगर्स मिले, वैसे ही अच्छे से अच्छा मूवीज बने और एक से बढ़ के एक मूवीज बने। और 90 का दशक वो दशक था जहां पर फिल्म फेयर अवार्ड्स की भरमार लग गई थी, एक फिल्म से दूसरे फिल्म का इतनी ज्यादा टफ कंपटीशन थी आगे बढ़ने की कि क्या ही बताया आपको। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं उस जमाने की एक ऐसी फिल्म के बारे में बातें करूं और आपको सॉन्ग्स सुनाऊं जिनका जो है अगर हम कहें तो एक खास हमारे आज के बॉलीवुड सुपर डुपर स्टार का नींव उस जमाने में उस फिल्म ने रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, 25 जून 1992 यानी कि 1992 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना एसआर के यानी कि किंग खान के करियर की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। बातें करेंगे इस फिल्म के बारे में बहुत सारी, लेकिन हो जाए सबसे पहले इस फिल्म से गीत। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों आपको बता दें कि दीवाना फिल्म में शाहरुख खान वाला किरदार पहले अरमान कोहली और अभिनेता अविनाश बधावन की को ऑफर हुई थी, लेकिन अविनाश बधावन ने तारीखें ना होने के कारण ये फिल्म को करने से मना कर दिया था। वहीं अरमान कोहली ने कुछ विवाद के बाद ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती और शाहरुख खान उन दिनों दिल आशना है के शूटिंग के दौरान जो है दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो दिव्या भारती ने दीवाना के मेकर्स को शाहरुख खान का नाम सुझाया था, जिसके बाद उन्हें ये रोल मिला। जब दीवाना का ऑफर शाहरुख खान के पास आया था तब पहले से ही 5 फिल्में साइन कर चुके थे, जिसमें दिल आशना है, राज बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, किंग अंकल और कभी हां कभी ना। ये फिल्में थी, व्यस्तता के कारण वो इसे मना करने वाले थे, लेकिन बाद में निर्माता निर्देशक के अनुरोध करने पर उन्होंने काम करना स्वीकार किया। संयोग देखिए कि शाहरुख खान की बाकी साइन की गई सारी फिल्में बाद में रिलीज हुई, उनमें से ज्यादातर फ्लॉप शो रही, यानी कि फ्लॉप हो गई, लेकिन दीवाना पहले रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट बन गई और इस तरह से शाहरुख खान की यह पहली फिल्म भी बन गई।

दोस्तों इस फिल्म में शाहरुख खान की स्क्रीन टाइम लगभग 75 मिनट की थी, लेकिन इतने छोटे समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और एंट्री सॉन्ग ए मेरी जान ए मेरी जाने जिगर सोचेंगे तुम्हें प्यार जैसे सॉन्ग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ दी। अपनी पहली फिल्म दीवाना के लिए शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और जो है ये इस फिल्म से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो चलिए मैं ज्यादा बातें ना करते हुए, किंग खान तो अब किंग खान ही बन चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी यही सॉन्ग जिससे वो बहुत पॉपुलर हुए थे सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं इसे सुना दूं आप सभी को।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम FM बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं दोस्तों बॉलीवुड अपडेट्स लेकर। बने रहे अरुण FM के साथ।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब वक्त हो चला है बॉलीवुड अपडेट का, तो चलिए बॉलीवुड के पन्नों से आज क्या क्या ताजा तरीन खबरें आ रही है आप सभी को सुना दूं। सलमान खान की बड़ी मुश्किलें। NDTV इंडिया के अनुसार चंडीगढ़ अदालत ने बिंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम धोखाधड़ी मामले में सलमान खान को नोटिस जारी किया है। कीर्ति सेनन के महिलाओं के पहनावे और आजादी वाले पोस्ट पर राहुल गांधी ने समर्थन जताया है और महिलाओं को ट्रोल ना करने की अपील की है। वहीं तापसी पन्नू ने भी कंगना के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि अब तो मुद्दा खत्म ही हो गया है। तिरंगा प्रेरित ड्रेस पर हुई ट्रोलिंग के बाद उर्वशी रौतेला ने सफाई दी है कि वे देश को अब अपनी पहचान के रूप में साथ रखती है। दिग्गज फिल्म मेकर कुकू कोहली का हाल ही में निधन हो गया है, जिनका दो दिन पहले ही दौरा पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो थी बॉलीवुड की सुर्खियां, और अब आप सभी को सुना दे चंद बेहतरीन नगमे। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड अपडेट्स और प्यारे प्यारे गीत। बहरहाल दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अब से बस कुछ ही देर में आप सब वांगचू में समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों अभी आप वांचू में समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे वांचू श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। दोस्तों जी हाँ, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां हम करते हैं दस दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल दोस्तों आपसे बस कुछ ही देर में आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
6: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों, फिल्म गैंगस्टर के इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल, हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में आप हमारे इदू मिश्मी बोली में समाचार सुन सकेंगे। कृपया कुछ पल तब तक प्रतीक्षा करें।

0: ऐच आकाशवाणी ईटानगर पुएला पुची जैनहलु एहो न्यूलिनी एतनची इदुमिस्मी आहो लाकीजी दरगालंबो माय भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे एजरका आंजो थार कोकोमाने अना खेलो इंडिया डायलॉग आखगाव मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माने इंडिया तिका एम माने इगा मे आलम रोगो चिचगाय बौदा ला होगा आतिकाचि स्पोर्ट्स तार आचु प्राबा एवचिपवा चिचगाय बाव प्रोग्राम मा स्पोर्ट्स तार माचे लीडर नंबर वॉलंटियर नंबर दोने स्पोर्ट्स तार या म्या नंबर में खिमेगाय बौदा ला होगा यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर में बुनी मैं दिल्ली माचे श्रम शक्ति भवन माने अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन मेघालय पावर मिनिस्टर मेटबा लिंगदो अदने मिजोरम पावर मिनिस्टर एफ रोटिंग लियानागो चौगा महो किमिंग अतिको मावासु कान्यासु कासो किलोवाट सब स्टेशन अजितेवे लापरागे अरुणाचल प्रदेश माची मुखो प्रोजेक्ट चिपो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन गो चिचगा ही बदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश माचे माची चिंता मामा पावर प्रोजेक्ट अजिते पावदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर में यूनियन मिनिस्टर को लगाचे महो आ मीटिंग मने आया था तिकामा पावर प्रोजेक्ट अजिते हुआ इधर ने इलेक्ट्रिक पावर आपी हुए चिपुआ चिचा उन्हें पता ला होगा केरला माचे इमु में ऐतानी ओनाम फेस्टिवल ऐनगा महो अरुणाचल प्रदेश माचे या केरला माचे इमु के बा इपा इगाई बना ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनाइक में ला हेगा ने अभी पुदुची आ फेस्टिवल में अतिकाची इमु आम है गो एहो एम्बया बा नोला औषधा उजिदा ला हेगा दा आहोगा अच्छा चा अवताची गो खोआन दो गे महो बुदितो मा उताची गे नेम अपर सुबनसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बुनी अम्बतो लाइट एम अम्बुगे ने मॉक ड्रिल अखंडगा लादा ला होगा डीसी तासो गांबो दोने एसपी पवन कुमार यादव में लाने के ने मॉक ड्रिल अखने का मां पुलिस दोने किसा अरुणा डिपार्टमेंट में माचे इमु में किगा बदा ला होगा डेवलपमेंट जो तो मां यह महो प्राणे मां दुते के ने जोने का नाव के बने ग्राम पंचायत मेंबर लापगे पंचायत मेंबर अलंबर है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट माचे में ला रुचि ना ने दीपमपुर डिस्ट्रिक्ट अनिनी माचे देशी यशवंत मीना में पुनी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी मीटिंग चिनगा महो लातगा ने पंचायत लीरा अनुभव में अतिकाची डेवलपमेंट जो ने तो ने अतिकाची इमु आरोगनाओ के बने इगा आम है आकुआ पेमी मुंजी खीन जो ने जी ना लगाची दा आहोगा ऐसा चिका आम नुमा जो ने वे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तो ने जिला परिषद डेवलपमेंट प्लान पास का बा मीटिंग मा जेडपीसी साधु मिहू में भी चिचाय बने पंचायत अतिका मा जी डेवलपमेंट जोता आतो हम भी हुए डिपार्टमेंट तो ने किसा इमो अनुभव में के बने जोरों का बुझी ना लाए बता आहोगा अतिका मा प्लान ने डेवलपमेंट जोते हुए के बने डीपीसी में काजी अरुंधा पुई चिपुआ एडीसी जाले उम्पो में लाके बा मीटिंग मा डिपार्टमेंट आ जाहे तालम्बो जेड पी एम एम ए दोने पंचायत माचे इकिशा जो है मोनपुर में गिगा बदा ला होगा अतिका मने आयु मुग आंजी गा बा अलिव कैंपेन को मने ईस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट माचे एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपू में बुनी प्रोग्राम आखने गा मा ईस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट माचे में आ यूनिवर्सिटी माचे आजाहिता मैं आनंद्रो आई मुगा अंजी दू हामिने प्रा इजिना लाने आला जगह बदा आहोगा इंडिया माचे आर प्रगनंदा मैम जर्मनी माचे विंसेंट केमार है हुलुखीनी खीनी पॉइंट माने अनेगे ने ग्रैंड चेस टूर माचे फाइनल मा क्या बदा ला होगा प्रगनंदा मैम फाइनल मा अमेरिका माचे फेबियानो करुणा गो एमगाई बो महो ऐसा टूर्नामेंट मा ऐसा लोन दो किया इमु कासो है हाँ नचे ग्रैंड चेस टूर्नामेंट मा एंडो खिजगा वदा ला होगा ऐसा हो कपी का तो एपगा इंडिया तिका एमु पाई मा जो ताफी जो ताना ऐ दोने शिहाला तुगा एम्बे अरु yongachi po government me athu suga ji da ne health department ma che secretary a cha do ne indian council for medical researches ma che director general dr rajib bel me la ho ga ne acha embe he ji pa cha ene thukum da alige ma bo atika che mu me o sa to ga ne ji ji na la ga da a ho ga ha to pra na ma cha ta ku to e do ne ᱡᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱨᱩᱱᱫᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱟ ᱵᱨᱟ ᱦᱟᱵᱟᱣ ᱯᱟᱱᱟᱵᱩ ᱮᱫᱟᱱᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱵᱮᱞᱢᱮ ᱞᱟᱣᱜᱟᱫᱟ ᱟᱦᱚᱜᱟ ᱮᱛᱟᱱᱪᱤ ᱤᱫᱢᱤᱥᱢᱤ ᱟᱦᱚ ᱟᱞᱤᱢᱟᱣ ᱫᱚᱵᱟᱭ
1: ᱮᱪᱟ ᱟᱠᱟᱥᱣᱟᱱᱤ ᱤᱴᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟᱞᱮ ᱤᱫᱢᱤᱥᱢᱤ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢᱟ

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इदुमिश्मी समाचार। अगर आप हमारे इदुमिश्मी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: ये देख कैसे।
8: हैप्पी बर्थडे भाई।
7: दीका,
9: हाँ मेरा फेवरेट कलर
10: हमेशा शॉपिंग।
11: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
12: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
13: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
14: आई नो ना।
13: RBI कहता है,
15: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
16: दिल से दिल तक बात पहुँची, मिलते मिलते सनम, ओ
17: गीत संगीत,
18: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
17: प्यार भरे अल्फाजों में
18: दिल से दिल की बात,
17: बस आपके नाम।
18: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

वाकई में दोस्तों, आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई में पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। बहरहाल अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों, इस बेहद रोमांटिक गीत के साथ ही हमारे आज की जो है हिंदी फिल्मी गीतों का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। जी हाँ, अरुण एफएम आप सभी का अपना एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, चलते चलते वक्त हो चला है हमारे आज के इस दूसरे प्रसारण सेवा को संपन्न करने की। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपके आज के दिन को हम थोड़ी सी बेहतरीन बनाने में कामयाब हुए हैं। इस उम्मीद को हम आगे भी जारी रखेंगे हमारे तीसरे प्रसारण सेवा में। जी हाँ दोस्तों, और वो कहते हैं ना कि संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। तो अच्छा कर्म करें और अच्छा फल पाए, इन्हीं शब्दों के साथ आपके आगे के सफर जो है वो बहुत ही अच्छा बीते, रेस्ट आपका जो इवनिंग है वो बहुत अच्छा और खास बीते। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ संचालन निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता नंद कुमार तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपना आप सभी से रुखसत होने की इजाजत तो चाहती है, लेकिन साथ साथ चलते चलते ये भी बता देना चाहूंगी दोस्तों कि आप सभी के लिए, आप सभी का भरपूर मनोरंजन करने के लिए और आपके इस खूबसूरत सी शाम को और बेहतरीन बनाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुकी है आप सभी की चहेदा आरजे सुलोकना। तो मैं उनको स्टूडियो हैंडओवर करते हुए आप सभी की मंगल कामना करते हुए इस प्रोग्राम से अलविदा कहूंगी और मैं बता देना चाहूंगी कि अब से बस कुछ ही देर में आप तांगसा समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

파비아노 가루아나 잠수 도칭으로 더 롱랑의 단랑 툼러

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।

0: नमस्कार श्रोता दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हवाओं का रुख मोड़ दे जो, हवाओं का रुख मोड़ दे जो, वो तरन्नुम लाते हैं। सुरों के इस नए सफर में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। इससे पहले दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे आरजे अपर्णा की सुरीली आवाज, और अब आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से, यानी कि आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम के स्टूडियो से, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना, हाजिर हूं इस तीसरी प्रसारण सभा का आगाज करने। हमारे इस संगीतमय सफर को बिना किसी रुकावट के आपके आंगनों और दिलों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पंचनंद डोले तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

आकांक्षा शर्मा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जोगी फिल्म शादी में जरूर आना से। और दोस्तों इसी गीत के साथ ही हमने शुरुआत कर ली है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट जिसे आप अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। कार्यक्रम है गुड इवनिंग ईटानगर। आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों अब वक्त है कि हम आपके लिए पेश करें एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। वैसे कहते हैं कि कहानियां महज कहानियों में ही सच होती है, लेकिन इनकी सीख हमारी असल जिंदगी में कहीं ना कहीं मायने जरूर रखती है।

तो चलिए शुरुआत करते हैं ये कहानी का दौर। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश हो जाता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और केकड़े के पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसे दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। तो दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी है केकड़े और समुद्र के लहर के दोस्ती के बारे में, पर ये कहानी हमें यही बताती है कि सच यही है, कई बार हम सामने वालों को या तो फिर सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उन्हें गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए मन में वैर लाने से पहले बेहतर है कि हम सोच समझ कर ही निष्कर्ष निकालें।

0: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

और दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के इस अंक में बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं हम आप सभी को इसी गीत के साथ। 4:45 होते ही आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। शाम के 5:00 से आप सुन पाएंगे नौकते श्रोताओं का समाचार। शाम के 5:05 पर हम फिर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर। तो बने रहिए अरुण FM पर और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी मीनाक्षी मजुमदार से सुनेंगे आप समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को किया संबोधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए उठाना चाहिए कदम। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा

एच वन एन वन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का किया आग्रह। गृह मंत्रालय ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम किया। ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में पहुंचे ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारियां, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल परिस्थिति की तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। कार्यक्रम के बाद युवा प्रतिभागियों, माई भारत के स्वयंसेवकों, स्थानीय खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय स्तर पर संवाद होगा। इस पहल के एक प्रमुख विशेषता खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद होगा। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा, जहां युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये संवाद खेल ओलंपिक आकांक्षाओं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा सहित पांच विषयों पर केंद्रित होगा। खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनके आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रेमी राष्ट्र के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इस संवाद में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यह व्यापक अवसर निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, बढ़ते मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में वित्तीय और वाणिज्य सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कनाडा के बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और नियामकों के साथ न केवल भुगतान के क्षेत्र में बल्कि अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचों को आकार देने में भी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय के उल्लेखनीय बदलाव आया है। इसमें साझा लोकतांत्रिक तथा बहुत मूल्य, बढ़ते आर्थिक जुड़ाव, उच्च स्तरीय संवाद और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंध का योगदान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा है कि देश की तरक्की के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना की मंजूरी पत्र सौंपते हुए सुश्री गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक 9,22,000 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि आज 25

0: उन्होंने सुरक्षा परिषद से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि प्रतिबंध सहित उसके उपाय अनजाने में मानवीय सहायता या वैध खाद्य और कृषि व्यापार में बाधा न डाले। श्री हरीश ने कहा कि ऊर्जा बाजारों, उर्वरकों, आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय लॉजिस्टिक्स और कृषि व्यापार में व्यवधान ने यह प्रदर्शित किया है कि क्षेत्र संघर्ष विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। भारतीय दूत ने कहा कि लचीले और खाद्य सुरक्षित समाजों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली और रोम आधारित एजेंसियों द्वारा समर्थित सुरक्षा परिषद के बजाय राष्ट्रीय सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। IMA ने कहा लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है, क्योंकि H1N1 एक वायरल संक्रमण है। IMA ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। IMA ने संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए बुनियादी निवारक उपायों की सिफारिश की है। इनमें कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढककर स्वच्छता का पालन करने की भी सलाह दी गई है। भीड़भाड़ वाले और बंद स्थानों में अच्छी तरह से फिट होने वाला मास्क पहनने की भी सिफारिश की गई है। राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सूर्यापेट में हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में लीडर बनने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस में समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस कदम से आपराधिक मामलों का सुप्रीम कोर्ट तक निपटारा 3 साल के भीतर हो सकेगा और सजा दिलाने की दर भी 25% की बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth and young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today said that empowering women is essential for the country's progress. Handing over the approval letters of the Delhi Lakshmi Yojana in New Delhi, Ms. Gupta said that over 9,22,000 women have registered for the scheme since its launch. She said that approval certificates were handed over to 2,500 beneficiaries today. The Chief Minister also said that these beneficiaries will receive 2,500 rupees on the first of the next month after completing due formalities. She added that the financial assistance can help women meet important needs including children's care and education, household requirements or support for the

0: livelihood and business activities. She said that the objective of this scheme is to provide financial security to women and make them self-reliant. The Indian Medical Association, IMA, has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza A, H1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over-the-counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. It specifically cautioned against self-medication with antibiotics. According to association, antibiotics should be taken only when prescribed by a qualified medical professional. The IMA said H1N1 commonly presents with sudden onset of high fever, chills, persistent dry cough, sore throat, severe muscle aches and fatigue. The association has recommended basic preventive measures including respiratory hygiene by covering their mouth and nose while coughing and sneezing, wearing a well-fitted mask in crowded and enclosed spaces, among others. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said the move will enable disposal of criminal cases up to the Supreme Court within 3 years and raise the conviction rate by 25%. India has asserted that the immediate priority of the United Nations Security Council must be to take steps to mitigate the humanitarian consequences of ongoing hostilities. Addressing a Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council's role in mitigating global and local food crisis, India's permanent representative to the UN, P. Harish, called for safe, rapid and unimpeded humanitarian access as well as support for effective deconfliction arrangements. New Delhi has rejected the references in the report of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, terming them politically motivated and highly malicious. In response to the queries on the committee's report following India's 11th periodic review under International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that India participated in the spirit of constructive engagement as a routine treaty body review. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे नोक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अबे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ वा नोक्टे प्रोग्राम अतु रंजिता वान बंगा सांपोत दंगरिन रिन नंग नोक्टे को बोच चोतात कर। तेजा बुधवार रोकनी इरोक तारीख अगस्त चंग खोबोचोकोते पे वांगो सोसिया गवर्नमेंट में अरे रेस्पिटरी क्वेंचेट लेमिन लमे तमखुन था संथम थम जज्जे रंग चोसोक रंग लाडरी की गामे होंगजाप का दिल्ली मीडिया नंग सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च टिको डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डॉक्टर राजीव भल में तंगुका नंग जज्जे रंग गाय का अरे खुंचत पे रंकु खुंचत ना मैं होंग जाप का तंहुका नंग साबंग बंग दिको जो खो फंवा है असंतम तम पक्षा रंग थोकोई का जर्मनी वा विंसेंट केमार नंग चेस खेल को जेनल में नंग इंडिया वा ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा फाइनल नंग लावंग ता अरे फाइनल को फाबियानो करवाना यूएसए वा दम को लोम नंग मिन अबंग वान रोम जेन ते पे ग्रैंड चेस टूर रंग तालुम छोना तेजा यूनिवर्सिटी वा श्रुति हॉल नंग एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत खोन को एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम होनवा अरे प्रोग्राम पे ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस ईसियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट दमनंग लूल में यूनिवर्सिटी व न्यावी तेहे नंग ड्रग्स जोग था नंग रुंदोंग चंद्रो नंग छिसी नावा थोकुआ अनिनी नंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स निया जिला परिषद डेवलपमेंट प्लान फाइनेंशियल पा हाजाजनी रोगनी इरोक में हाजाजनी रोगनी इंगित रंग डिप्यूटी कमिश्नर यशवंत मीना में मजा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी दिबांगवेली नंग मीटिंग थियनवा अर मीटिंग को डिप्यूटी कमिश्नर में चंतो पंचायत राज व अदोंग हे नंग काम पे पुनरे मोटकर रंग नायका मजा दापोरिजो नंग अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुआ अरे मॉक ड्रिल पे जंगहान रंगवो छीजा नंग चंद्रो में पेछुन रंग नावा थोके का अरे मॉक ड्रिल पे डिप्यूटी कमिश्नर अपर सुबनसिरी तासो गंबो देखो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपर सुबनसिरी पवन कुमार यादव हे दम को अहान डिपार्टमेंट निया एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट देखो चंतो जड्रियन ते है रूल में अरे मॉक ड्रिल पे हुआनवा नेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया डायलॉग नावा निंथो को उमिन नेशनल स्पोर्ट डे रंगवो जा को मेरा युवा भारत है में अरे रंगवो पे कुमिन अर प्रोग्राम को चंतो कॉलेज वा वान्यी न्यावीते फंग डिस्ट्रिक्ट वा चंतो स्टेट निया यूनियन टेरिटरीज वा है दंगमिन अर इंथो जा को नंग इंडिया वा चंतो खेलुम ते नंग हा दंग रंग मोट काते हे खुरंग तंहुका रंग लारित निनगा को होंगजाप मिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंथो दी को नंग नाना हेदम नंग मिन जापिन मिन खेलो इंडिया पे नंग विकसित भारत रंग लाडरिते खेलुम अंगांगा नंग जड्रियन डंग रंग हेथोमिन गामे अरे खेलो इंडिया पे लाडरी की गामे होंग जाप का तजा नंग नोक्ते खोबोत पे अगुजुला थोन मुंगता अरो नंग नोक्ते रोन्यान से चोतात मंगन

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नौकते श्रोताओं के समाचार। इस कार्यक्रम को आगे अभी पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। अब से कुछ ही पलों में पेश है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

शाम का वक्त हो, हल्की मस्ती हो और बेहतरीन गाने चल रहे हो तो सफर अपने आप सुहाना हो ही जाता है। थोड़ी मस्ती, थोड़े हिट्स के साथ हम फिर हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का एक नया सेगमेंट।

0: बिल्कुल, हम बेफिक्र चलते रहे, बस यही तो जीवन है दोस्तों। तो दोस्तों, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हम आगाज कर चुके हैं फिल्म गोलमाल 3 के गीत के साथ। आप माने या फिर ना भी मान सकते हैं कि गोलमाल की जो सीरीज है उसमें कुछ काफी मजेदार हिट्स हैं। कार्यक्रम में आगे हिट्स का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत

0: विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गोलमाल मूवीज के जो गाने हैं वो अलग ही मूड सेट कर देते हैं? आप माने या ना माने, पर इस फ्रेंचाइजी का म्यूजिक है एकदम ब्लॉकबस्टर। और इसीलिए आज के इस अंक में, यानी कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव को सुपर फन बनाने के लिए, इस अंक में हमारे पास लाइंड अप है बेहतरीन नगमे स्ट्रेट फ्रॉम द गोलमाल मल्टीवर्स। तो सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर कारून FM, ओनली ऑन 103.1 MHz।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
5: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: और दोस्तों गोलमाल मल्टीवर्स के इस क्रेजी रोलर कोस्टर राइड के साथ कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी इवनिंग ड्राइव एकदम ब्लॉकबस्टर रही होगी, पर आप जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। और कार्यक्रम शाम की महफिल में हम आपके लिए पेश करते हैं सोलफुल एंड सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

शाम होते ही महफिल सजती है कि शाम होते ही महफिल सजती है और थकान धीरे धीरे घट जाती है। तो दोस्तों मुस्कुराइए, गुनगुनाइए। कहते हैं कि हर शाम हसीन हो ही जाती है अपनों के साथ। आप सभी का कार्यक्रम शाम की महफिल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स।

0: सूरज ढले तो लगता है जैसे कांधे पे मेरे सर है तेरा। मेरा ठिकाना चाहे जहां हो, यादों में मेरी घर है तेरा। बिल्कुल, आप सुन रहे थे अलीजे। दिल को दिलासा देने वाला और सुकून भरा गाना, अरिजीत सिंह, ऐश किंग और उनके साथियों की आवाज में फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और दोस्तों, ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 MHz पर। चल रहा है कार्यक्रम शाम की महफिल। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: दी हाँ ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: हर जिले की अपनी कहानी हर रचनाकार की अपनी आवाज क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए क्या आप अपनी संस्कृति विरासत पर्यटन परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति विरासत पर्यटन परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज हर जिले की अपनी कहानी हर रचनाकार की अपनी आवाज अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें आपकी कहानी आपकी पहचान अब पूरे भारत के नाम

0: तो दोस्तों इस 90s के नगमे में मैं जरा खो गई थी, तो आपको बताना चाहूंगी कि इसी नगमे के साथ ही सॉफ्ट सोलफुल सूदिंग नगमों का ये अंक कार्यक्रम शाम की महफिल आज यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन फिर कहेंगे आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

सोनू निगम एवं नीति मोहन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सपना जहां फिल्म ब्रदर से। और इसी गीत के साथ ही शुरुआत हो चुकी है हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जो कि आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों बताना चाह रहे हैं कि इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमे, बैक टू बैक ना सही लेकिन कुछ ब्रेक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अंक भी पसंद आएगा।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: दी, ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
7: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
10: RBI कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंस।

0: की जांच लिया। तुम ठीक हो?
1: Yes, uncle.
0: हाँ, of course everything's okay, papa. Husband, wife, stupid friends. अब सो जाओ। Good night. मामा।
2: चलो जल्दी।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स।

ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: तो दोस्तों, फिल्म रन के इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्म में गीतों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। आदि श्रोताओं के समाचार के बाद हम आपसे फिर यही मिलेंगे शाम के 6:35 पर, ले आएंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Si akasmani tanawa istesor le kumrik sudala sium ka adi pewem irob dung kera pelutat agamem tat paye lebinasi oter karpu. Nyampo kelonga lo Prime Minister Narendra Modi kelo India dialog pewem video conferencing lo luboye. Pewo sim National Sport Day 2026 celebration pewo dan lo country lo state Union Territories Arang Lok, District Lok, Sisang Gisana, Mimum Yameng, Imun Gadope, Mera Yuba Barat, Mai Barat Igaboye. Pebo Ibonam Solo Iman Lekope Ibosie, Sisang Gisana Lidarpe, Ibopena, Dolung Mongkongam Aipe Kangabodope, Amulamo Aipe Mesisidope, Nesonem, Adidope Igabola, Country Lok, Sisanem, Imano Imodope, Buluk Idea Ibokolok, Sport Imanem, Mingabla, Yarbodope, Ibonamko. Pebosim, Local Amiacom Imingala, Delok, Sisangisane, My Barat Voluntary, Local Iman Ina, Delok Minker Sinam Pabliga Com Imingaye. Kelo India Dialog Lok, Mibom Sinam De, Country Lok, Sisangisane, Sport Lo, Imingadope, Mingul Namko. Agika ken namem ikan sila ayrupe iga kangebola bixet barot pe ibodope mila ibonamko. Pawan lo Union Minister Manohar Lal Northeastern State lo Energy Sector lega pe lubokabo sidope melokalonga de lo New Delhi lo Seram Sekti Baban lo Arunachal Pradesh lo Deputy Chief Minister Sona Min Meghalaya lo Power Minister Medba Lingdong Mizoram lo Power Minister Ep Roding Lain nabulum karisanam peboko deuposita. Pebo delo disembe Arunachal Pradesh lo kimino 132-33 kV substation lo LILO line ko ilusidope lubomto. Delo projeksi bortes pamsone aidan mang 33 kV kimin delo ke anenago lo duna amie limit lo ikolo bojerupa angkepadum lo temlikto. Menbe Arunachal Pradesh lo hydropower project

और श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे अभी पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और बिल्कुल लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट टू यू सोनू निगम। इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया था कार्यक्रम आज के कलाकार, और आप जान ही गए होंगे कि हमारे आज के कलाकार हैं सोनू निगम। आज हम सोनू निगम के बारे में ही बातचीत करेंगे और साथ ही पेश करेंगे उनके गाए हुए नगमे।

सोनू निगम, जिसकी आवाज ने 90s के दशक से लेकर आज तक हर दिल पर राज किया है। सुरों के बेताज बादशाह सोनू निगम। कहते हैं कि सोनू ने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही मंच संभालना सीख लिया था। फिल्म बॉर्डर के गाने संदेशे आते हैं, उन्हें रातों रात देश की धड़कन बना दिया। लेकिन सोनू निगम सिर्फ फिल्मों के प्लेबैक सिंगर नहीं थे, उन्होंने भारतीय संगीत में एक नए दौर की शुरुआत की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द इंडी पॉप एरा की। 90s के दशक का आखिरी दौर और 2000 की शुरुआत, जब कैसेट्स और सीडी का जमाना था, तब सोनू निगम ने गैर फिल्मी गानों यानी इंडी पॉप में जो जादू बिखेरा, उसने इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ चलते हैं सोनू निगम के उसी एरा की ओर। एक बार फिर जीते हैं सोनू निगम के वो इंडी पॉप एरा का जादू दीवाना तेरा के गीत के साथ। और ये है एल्बम दीवाना से, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1999 में।

तो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में हम बातें कर रहे हैं सोनू निगम की, और साथ ही पेश कर रहे हैं उन्हीं के गाए हुए नगमे। उनके शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें असली पहचान टीवी शो सारेगामा पा को होस्ट करने और एल्बम की याद ना आए वो फिल्म बॉर्डर के गाने संदेशे आते से मिली। उन्होंने हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी और कई भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्हें उनकी बेहतरीन गायकी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं।

साथिया गीत के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त हो रहा है। छोड़े जा रहे हैं इसी गीत के साथ। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार हम फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे एक दिलचस्प कार्यक्रम, बस यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।

Sí, akazmani itarno pokuma sopolga alo chebnyugola lok nan eje urunga kanaba je rama tanmelam almel surunga nishi ahum ar molanje rama tanga de tachob surunga shi pem tapa chore jebjren shin nerm akom repu babla kelo india gella gaba arne flomistan dam narendra modi ye video conference lok ahum aham javken jir kunaham mem pato ओकेशिक ने रिकमेंगो हम नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 हम मोकग कुमसुकोरा गदाम लो मना गनम लगा अब सोइस्ते तला यूनियन टेरिटरी लोक यदम एनिशेट क गोबनी पायापा गदन रेपाताकपा मोतु कुव सोको प्रोम कवा हम मना गद कुव मेरा युवा भारत ओक माई भारत बनी ये वाग गद तुकुना बखम में पाथा तो ओक भारत ने अलम सीलिंग करन गम दोकुब केला तो लाग फल लो शिचा गचा तेरे निजरिया पा गदने अलम लेंदागरन गम दोकुब सोक रिगो में गोहम रिग पाग गग तुकुना बखम में पाथा तो मोर्ग फोल आल हो नीत ने दिल्ली ग श्रम शक्ति भावन लो नॉर्थ ईस्टान गदा लोक इलेक्ट्रिक उमग फल लो अगम आ लिक लो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने शोना में ने ला मेघालय ग पावर मिनिस्टर मितवा लिंगदो ओक मिजोरम ग पावर मिनिस्टर एफ रोदिंग लानिया बोल ने अगम अहम रई बोल ग पावर मिनिस्टर धर्म मनोहर लाल ये जामी शिप कुम हम में पातो ओक लेरो नाम तो लोक लाहिक लाकिमिन गचिमर आकेन चुमुं गोला ओम ओब्लिक चुमुं गोला ओम केवी शिवन श्री ने मिंपुला अरुणाचल प्रदेश लो इलेक्ट्रिक उम ग हुलेन मुख ग फल लो अलव हेंज क जे लाभ का हमला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ए जामिशिप को बखल में पा था तो ओक सोक किमिन ग केवी मेन नाम इलेक्ट्रिक उम होलन मोक लोक सोक आक आय गदा थेलो इलेक्ट्रिक उम हम आलबे हुपा बपा मोरकुन हम ना पय चपा ताप कु मखम तो अतालो निबि निमा क पमेला मि सेला आलमा बे रिमि मिमि सिक बोलो ये मुला चतुर्मेंटोर शिला ओक मेगो मेक ला सेग गगसा दे हुकने लुक गले लो मोरुम धापुर जो टाउन लोरिगो मेंगो हम आपर्शवस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ह रिशिर मिनशिर पुकन महल में पातो ओक्सोक रिगो मेंगो हम मोक ड्रिल गोब मेंगरिक ला आपर्शवस रिक दिस तासो गांबो ला एसपी फवन कुमार यादव ओक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट ओक कीव स्टेक होल्डर

0: सुन रहे थे आप निशी श्रोताओं के समाचार को। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों अभी आप सुनेंगे हमारा दिलचस्प सेगमेंट सफरनामा का, जिसमें आज हम करेंगे एक खूबसूरत सफर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस कार्यक्रम में और जानते हैं क्या खास है इस अंक में।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रेवल शो सफरनामा। कभी कभी किसी जगह तक पहुंचने से पहले ही वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। एक जंगल, अनजाना रास्ता, किसी अनदेखी पक्षी की आवाज और फिर अचानक पेड़ों के बीच दिखाई देता नीला पानी। आज हम जाएंगे ऐसी ही एक जगह, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कामलांग के घने जंगलों के अंदर, ग्लॉ लेक। ग्लॉ लेक भारत की 101st रामसर साइट है और अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट रामसर साइट। आखिर इतनी दूर इस झील में ऐसा क्या खास है? आइए रास्ते में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफरनामा।

आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। हमारी यात्रा शुरू होती है वाक्रो से। वाक्रो लोहित जिले का एक छोटा सा टाउन है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे और दूर तक फैले घने जंगल। ग्लोर लेक की यात्रा में वाक्रो से तकरीबन 4 किलोमीटर तक सड़क हमारा साथ देती है, फिर रास्ता खत्म हो जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं सीनाब्राय, यही है ग्लोर लेक का एंट्री पॉइंट। अब आगे का सफर एकदम पैदल है। सामने है एक छोटा सा रास्ता, दोनों तरफ इतने घने जंगल कि ऊपर आसमान भी पेड़ों के बीच थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है। कहीं बांस के झुरमुट, कहीं वाइल्ड ऑर्किड और अचानक एक हॉर्नबिल की आवाज। हम उसे देख नहीं पाते लेकिन उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज जाती है। शायद यही इस जंगल की खूबसूरती है। यहाँ हर चीज दिखाई नहीं देती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं। रास्ते में छोटे छोटे स्ट्रीम्स मिलते हैं, कदम बढ़ते हैं, थकान भी बढ़ती है लेकिन रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है।

घंटे की मुश्किल ट्रैक के बाद पेड़ों और जंगल के बीच कुछ नीला सा दिखाई देता है। फिर वो नीला हिस्सा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। एक कदम, फिर दूसरा, और सामने होती है ग्लव लेक, जिसे देखने के लिए हम इतने घंटे चले। अब वो हमारे सामने है, शांत और एकदम गहरी। कई घंटों की चढ़ाई और ट्रैक के बाद जैसे ही ग्लो लेक हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है, तो हमारी सारी थकान एक पल में ही गायब हो जाती है।

आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा ग्लोलिक करीब 82 हेक्टेयर में फैली है और लगभग 1168 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। इस रास्ते और इस लेक को किस तरह महसूस किया

0: और कितनी गहराई से इसे जाना, जानते हैं श्री चिसांग देवरी से, जिन्होंने कुछ साल पहले ग्लोर लेक की यात्रा की थी। सुनिए वे इस सफर को कैसे बयान करते हैं।
1: फॉर मी ग्लोर लेक का सबसे खासियत ये था कि जो फ्रेशनेस थी वहाँ पे नेचर का, दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको लेक दिखता तो है नहीं, आप बिल्कुल पहाड़ों में आप चढ़े जा रहे हो। एंड देन आफ्टर हैविंग ट्रैक्ड फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 hours, सडनली आप लेक को, मतलब यू गेट इंट्रोड्यूस टू द लेक, आपको लेक दिखता है, एंड देन इट सीम्स वेरी वेरी मैजिकल। आपको लगता है कि वाओ, इतना ग्रैंड लेक डीप इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल अंदर। सो दैट इटसेल्फ इज वेरी मैजिकल। और अगर आप वहां पे रात को रुकते हो एंड देन अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे, देन यू शुड गो आउट योर हट। आप जहां हट में रहते हो, वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर हट, देन यू विल गेट टू सी लेक के ऊपर बिल्कुल फॉग सा जमा रहता है अर्ली मॉर्निंग को, एंड दैट इज ब्यूटिफुल। द एंटायर जो ट्रैक का आपका एक्सपीरियंस रहता है वो काफी वाइल्ड एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये आपका यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में बाकी जगहों पे भी हम ट्रैक जाते हैं तो यूजुअली इट्स अ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली ट्रैक, इन द सेंस व्हेन आई से टूरिस्ट फ्रेंडली, ऑलरेडी ट्रैक बना हुआ है, सीढ़ी मतलब उन्होंने सीढ़ी वगैरह बना के रख दिए हैं, आस पास के जंगलों को भी काट के बिल्कुल यू नो लाइक क्लीन करके रखा हुआ है। ग्लोर लेक ट्रैकिंग इज नॉट लाइक दैट, ग्लोर लेक ट्रैकिंग इज वाइल्ड। तो जब आप वहां पे जाते हो, यू सी द नेचर द वे इट इज। थोड़ा टफ होगा, यस, बट एट द सेम टाइम विल यू एक्सपीरियंस द वाइल्ड, यस यू विल एक्सपीरियंस द वाइल्ड। सो इट्स लाइक एक्सपीरियंसिंग द नेचर इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिपेयर करके जाइए, लाइक फॉर एग्जाम्पल डू योर रिसर्च कि आपकी फिटनेस लेवल कैसा है, क्योंकि ट्रैकिंग इतना भी आसान तो है नहीं, तो काफी चलना पड़ता है, 7 to 8 hours आपको चलना पड़ता है, तो आपका फिटनेस लेवल कैसा है, क्योंकि अंदर जंगल के अलावा तो कुछ है नहीं। ऑल्सो कैरी वार्म क्लोथ्स विथ यू, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, सो कैरी वार्म क्लोथ्स विथ यू। खाने पीने का बंदोबस्त करके चलो पहले से ही, एंड ट्राई एंड ट्रैवल लाइट। अगर आप पोर्टर सर्विस ले रहे हो, पोर्टर सर्विस, देन इट्स गुड, बिकॉज तब यू विल हैव एडिशनल हेल्प पीपल कैरिंग योर लगेज। अगर आप खुद जा रहे हो, ट्राई ट्रैवलिंग एज लाइट एज पॉसिबल, क्योंकि जो वजन आपको यहाँ पे लगता है कि ओ मैं उठा लूंगा, बट वेन यू स्टार्ट ट्रैकिंग आफ्टर 2-3 hours आपको ऐसे लगने लग जाता है कि मतलब ये तो इतना भारी नहीं था, ये कैसे इतना भारी हो गया, राइट? तो इसीलिए कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड सो दैट यू नो आपका जो एक्सपीरियंस रहे वो अच्छा रहे। आई थिंक अरुणाचल, बस ग्लोर लेक ही नहीं बल्कि एंटायर अरुणाचल प्रदेश इज लाइक बसलिंग विद टूरिस्ट साइट्स। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सो द मोर वी मेक प्लेसेस टूरिस्ट फ्रेंडली, द मोर वी प्रमोट द एरियाज। ग्लोर लेक को अगर हमें प्रमोट करना है, इफ वी आर कॉलिंग ऑन द टूरिस्ट, वी हैव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास, ताकि वो टूरिस्ट लोगों को पता भी चले कि वहां तक पहुंचना कैसे है, रात को रुकना कहाँ है, हु टू कॉन्टेक्ट। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इज यूजली नॉट वेरी अवेलेबल। आइडियली आपको किसी कनेक्शन के थ्रू दी जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग टूरिज्म, इट शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन, एवरीथिंग शुड बी पुट अप ऑनलाइन, ताकि बाहर के लोग जो अरुणाचल से बाहर से आ रहे हैं, दे आर एबल टू कॉन्टेक्ट द राइट पर्सन एंड दे आर एबल टू प्लान देयर ट्रिप वेरी स्मूथली।
0: ग्लोर लेक यहाँ शहर का शोर नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बस ठंडी हवा, साफ पानी और चारों तरफ फैला जंगल। लेकिन इस शांति के पीछे सदियों पुरानी एक कहानी भी है। मिस्मी समुदाय के लिए ग्लोर लेक सिर्फ पानी का सोर्स नहीं बल्कि एक सैक्रेड प्लेस है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये लेक पानी की आत्माओं और पवित्र शक्तियों का घर है और इस लेक को नुकसान पहुंचाना मना है, यानी जिसे आज हम वेटलैंड कंजर्वेशन कहते हैं, उसकी भावना यहाँ की संस्कृति में सालों पहले से ही मौजूद थी।

0: आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा और मैं हूं इस सफर में आपका ट्रैवल बडी। कामलांग टाइगर रिजर्व में करीब 153 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं और अराउंड 49 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स पाए जाते हैं। यहाँ हुलॉक गिबन, क्लाउडेड लेपर्ड, मिसमिताकिन जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं और व्हाइट बेलिड हेरन भी यहाँ पाया जाता है, जो एक बेहद दुर्लभ पक्षी है। सोचिए इस झील की खामोशी के भीतर कितनी बड़ी दुनिया सांस ले रही है। इस पूरे इलाके की बायोडायवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन को सबसे करीब से देखते हैं कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर श्री बंटी ताओ। आइए सुनते हैं वे ग्लोलेक और इसके कंजर्वेशन के बारे में क्या कहते हैं।
1: मेरा नाम बंटी ताओ है, मैं कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये रामसर एक टाउन का सिटी का नाम है ईरान में। तो इन द ईयर 1971 में एक वर्ल्ड का कुछ कंट्रीज ने, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, उन्होंने सोचा है कि जो वेटलैंड है उसको प्रिजर्व नहीं करेगा तो पानी कल को नहीं बचेगा। ये सोच के उन्होंने एक कन्वेंशन किया है उसमें रामसर में, तो उसी कन्वेंशन का नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड का वेटलैंड को कंजर्व करना है, और उसी में इंडिया भी एक मेंबर है, सिग्नेटरी मेंबर है। एट प्रेजेंट अभी वर्ल्ड में 172 कंट्रीज है जो इसका सिग्नेटरीज। ग्लो लेक इज इन मिड लेवल वेटलैंड, मिड अल्टीट्यूड, सो दिस सच टाइप ऑफ वेटलैंड सपोर्ट्स लॉट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड इट बिकम्स अ लिंक पोर्ट हायर अल्टीट्यूड एंड द लोअर अल्टीट्यूड and it supports the river system and it harbors the aquatic animals and greenery around the lake. It supports lots of biodiversity. In fauna, we have lots of rare species such as Mismitakins, and we all as per record we have all the four big cats, the tiger, leopard, clouded leopard, and snow leopard. Snow leopard not yet recorded, but it is assumed that it is in the high altitude. And about the flora, we have around 49 species of orchids and other trees, around 150 species of other tree species. Jeez. And above that, there are actually these areas are unexplored. We invite the researchers and other amateur people to discover all these things, the hidden beauties and the hidden gems. Yes, we are expecting increased footfall. Tourist ka jo visit hai automatically barhega, kyunki it has now become international importance, a place of importance. So people will see all these important places and they may come here to trek to the Glow Lake. And by tourism, ecotourism, our local people will benefit by through ecotourism, homestays, tour guide, etc. and etc. It will not be like other tourism places where so much of disturbances like that will happen. It will be very पीसफुल टूरिज्म एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म। ऐसा एग्जैक्टली हमको कोई माइथोलॉजिकल नहीं मालूम, बट देन मिस्मी कम्युनिटी ट्रीट दिस लेक एज स्पिरिचुअल सोर्स एंड दे रिवर इट एंड दे यूज दिस ग्लो लेक नेम इन देयर शामैनिक परफॉर्मेंसेस एंड दे डोंट मिसयूज दैट एरिया और दैट वाटर, व्हाटएवर मे बी दे हैव।

0: social taboo for that lake, and they have a good, very much spiritual respect for the lake. For that only, the lake is still in very good condition without any damage or any dilution. When you start from Chenabrai, it is exhausting. 80% climb hai, from 450 meter mean sea level to 1168 meter sea level, mean sea level. So after getting tired for so many hours of trekking, when you look at the glow lake, all these things just disappears in a second. Yes. You feel blessed and you feel that you are in heaven. Especially night sky, clear night sky, and the morning sunrise is a very, very captivating one.
1: जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था, ग्लो लेक भारत की 101 रामसर साइट है और अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट रामसर साइट। अब सवाल है, ये रामसर साइट होती क्या है? आसान भाषा में समझिए, वेटलैंड यानी वो जगह जहां पानी और जमीन मिलकर एक खास इकोसिस्टम बनाते हैं। जब किसी वेटलैंड का इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पर खास माना जाता है, तो उसे रामसर लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई। भारत 1982 में इससे जुड़ा। अब सवाल है, क्या रामसर साइट के बनने के बाद यहाँ लोगों का आना बंद हो जाएगा? नहीं, रामसर का मतलब है प्रकृति को बचाते हुए उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना। टूरिज्म हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो सकती है।

आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रेवल शो सफरनामा। अगर आप कभी क्लॉ लेक जाएं, तो याद रखिए ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि किसी का घर है, जो साथ लेकर जाएं, वापस साथ ही लेकर आएं। प्लास्टिक से बचें, अगर कोई वाइल्ड लाइफ देखे तो दूरी बनाए रखें, पक्षियों को ना बुलाएं, स्थानीय लोगों की परंपराओं और आस्था का सम्मान करें। जिस नेचर को यहाँ के लोग सदियों से पूछते आए हैं, उनके लिए कंजर्वेशन कोई नई बात नहीं है। साइंस अब उसी को एक नई भाषा में पहचान रहा है। पर क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि ये स्टेटस एक जिम्मेदारी है। झील की, जंगल की, वाइल्ड लाइफ की, लोकल कल्चर की और हम सब की। अगली बार जब आप किसी लेक के किनारे खड़े हों, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, एक सवाल और पूछिए, इसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शायद क्लॉ लेक हमें यही कहती है, नेचर को हमें जीतना नहीं बल्कि उसे समझना है, उसके साथ चलना है और

आकाशवाणी ईटानगर का वाइब्रेंट ट्रैवल शो सफरनामा। तो आज के सफरनामा में बस इतना ही। आज हमने सिर्फ एक लेक नहीं देखी, बल्कि हमने देखा वाक्रो से शुरू होता एक रास्ता, एक सफर, मिसमी समुदाय की आस्था, जंगल में छिपी बायोडायवर्सिटी और एक ऐसी पहचान जिसने ग्लो लेक को अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट रामसर साइट बना दिया। हम फिर मिलेंगे एक नई मंजिल और एक नई कहानी के साथ। तब तक ट्रैवलिंग करते रहिए, नेचर से जुड़िए, जहाँ भी जाएं वहाँ से सिर्फ मेमोरीज लेकर ही नहीं बल्कि वहाँ कुछ अच्छा छोड़कर भी आइए। नमस्कार।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

उम्मीद करते हैं कि आपको सफरनामा का अंक बेहद पसंद आया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब फिर वक्त है हम आपको सुनवाएं और ले चले हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में। तो लीजिए, पेश है हिंदी फिल्मी गीतों का सफर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: ओके सैलरी, नए झुमके ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के अंक के बाद अब हाजिर है आपकी खिदमत में क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।

नई उम्मीद, नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ, ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सो केपक्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते? बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत, गालो भाषा में झुमकेन रालेन की आवाज में।

0: द्वारा गाए इसी नुक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Nayi ummeed, nayi aasha.
4: Shrota dosto, lijiye ab prastut hai yuvaon ka karyakram Yuva Vani.
5: यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं, ये हमारी यादों का संदूक है, हमारी भावनाओं की तरंग है और वो दोस्त है जिसने हर दौर में हमें अकेला नहीं छोड़ा। चाहे युद्ध का समय हो या आजादी की पुकार, चाहे पहली मोहब्बत की घंटी हो या परिवार संग बिताई कोई शाम, रेडियो हमेशा हमारे साथ रहा और इस 90वें साल में हम नमन करते हैं इस आवाज को जिसने न जाने कितनों को जोड़ा, सवारा और सवारता रहा। तो युवा श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं, रेडियो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा रहा है जो न केवल खबरें लाया बल्कि भावनाओं को भी आवाज दी। और आज इसी जादुई माध्यम की 9वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी के इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं एक

बेहद खास वार्ता रेडियो यानी कि हमारे यादों का पुराना दोस्त प्रस्तुत कर रहे हैं मंजू शर्मा। कभी आवाजों को छूने का मन किया है? अगर किया है तो रेडियो को सुनिए। ये आवाजों की वो दुनिया है जो दिलों तक पहुंचती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी यात्रा लेकर आई हूँ जो आंखों से नहीं सिर्फ दिल से महसूस की जाती है। ये यात्रा है रेडियो की, उस सच्चे साथी की जो चुपचाप हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। कभी सोचा है वो आवाजें जो हमने कभी देखी ही नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा अपनापन उन्हीं में महसूस होता है। यही तो है रेडियो की ताकत। रेडियो की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। ये तकनीक एक चमत्कार बनकर उभरी, एक ऐसी प्रणाली जो बिना तारों के केवल तरंगों से आवाज को हजारों किलोमीटर तक पहुंचा सकती है। भारत में रेडियो की पहली आवाज 1923 में मुंबई में गूंजी और फिर धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा को एक नया नाम मिला, आकाशवाणी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था हर घर तक आवाज पहुंचाने का। 1947 तक आकाशवाणी के पास केवल 6 स्टेशन थे और यह केवल 11% जनसंख्या तक ही पहुंच पाती थी। पर आज आकाशवाणी के पास 223 से ज्यादा स्टेशन है और इसकी पहुंच 99.1% भारतीय तक है। यह आंकड़ा सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये बताता है कि रेडियो अब हर भारतीय की धड़कन है। रेडियो का जन्म केवल एक तकनीकी आविष्कार नहीं था, ये एक आवाजों की क्रांति थी। क्या आप जानते हैं रेडियो की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी से हुई, फिर सिंगापुर और फिर रंगून से होते हुए भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित किए जाने लगे। तब यह एक क्रांति थी, देश की सीमाओं पर सीमाओं का पार करती, दिलों को जोड़ती। जब टेलीविजन आया शहरों में, रेडियो सुनना थोड़ा कम जरूर हुआ, पर जैसे ही एफएम रेडियो का दौर आया, रेडियो ने फिर से अपनी खोई हुई जगह वापस पा ली। लोगों ने एक बार फिर महसूस किया कि रेडियो आंखें नहीं मांगता, सिर्फ दिल चाहिए उसे समझने के लिए। आज रेडियो सिर्फ रेडियो नहीं रहा, ये बन गया है पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो, एफएम चैनल और यहाँ तक कि मोबाइल एप्स में समाया दोस्त। रेडियो आज भी गांव के किसान के खेत में गूंजता है, शहर की भाग दौड़ में सुकून देता है, रात की तन्हाई में कहानी सुनाता है और दिलों की धड़कनों से भी आगे निकलता है। तो दोस्तों, जब आप अकेले हो, उदास हो या जीवन की तेजी में सुकून ढूंढ रहे हो, रेडियो को जरूर सुनिए। शायद उसमें कोई कहानी आपको अपनी सी लगे या कोई गीत आपको आपके पुराने दिनों में वापस ले जाए। रेडियो वो रिश्ता है जो देखा नहीं जाता। रेडियो की दुनिया में एक बात जो सबसे अलग है वो ये है कि जब बाकी माध्यम चिल्ला रहे होते हैं, तब रेडियो सिर्फ बोलता है, सच्चाई से, सादगी से और कभी कभी चुपचाप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। रेडियो और आपातकालीन स्थिति, जब कुछ काम ना आए रेडियो तब आया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब बिजली चली जाए, नेटवर्क फेल हो जाए या कोई भी आपदा आ जाए, तब रेडियो ही एकमात्र साथी बनकर खड़ा रहता है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या कोविड जैसी महामारी, रेडियो ने हमेशा हर कोने में सूचना पहुंचाई है बिना किसी रुकावट। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये सीमाओं का मोहताज नहीं, बैटरी से चलने वाला सच्चा साथी है। अब बात करते हैं कम्युनिटी रेडियो की, वो छोटे छोटे स्टेशन जो गांव, कस्बों और लोकल समुदायों की समस्याओं, भाषा और संस्कृति को दर्शाते हैं। उत्तर भारत के गांव में खेती किसानी की जानकारी देने वाला कार्यक्रम, दक्षिण भारत में लोकगीतों से बच्चों को सिखाने की पहल, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में
स्थानीय भाषाओं में स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब सिर्फ रेडियो ही कर पाया। जो लोग किताबों से दूर है पर ज्ञान से नहीं, रेडियो और महिलाएं, एक नई आजादी की शुरुआत। रेडियो ने महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया, उन्हें अपनी कहानियां कहने का मंच मिला, महिला पत्रकारों और एंकरों को एक नई पहचान मिली, घरेलू काम करते हुए भी ज्ञान, स्वास्थ्य और कानून की जानकारी मिलने लगी। रेडियो ने एक ऐसी खिड़की खोली जहां महिलाएं अब सुनती ही नहीं, बोलती भी है। आज का युवा तेज है, स्मार्ट है, लेकिन भीड़ में खोया हुआ है। रेडियो में जब युवाओं की आवाज गूंजती है, चाहे वो कॉलेज का प्रोग्राम हो या किसी पॉडकास्ट मेजबानी हो, तो वो आवाज न केवल उन्हें मंच देती है बल्कि उन्हें खुद से जोड़ती है। कई नामी आरजे आज भी कहते हैं कि उन्होंने रेडियो को नहीं चुना, रेडियो ने तो उन्हें चुना है। बच्चों के लिए रेडियो है एक कल्पनाओं की दुनिया, कहानियां, कविताएं, पहेलियां, नैतिक शिक्षा, विज्ञान के मजेदार तथ्य। बिना स्क्रीन के केवल आवाजों से बच्चों को प्रेरित करता है। क्या आप जानते हैं, कई स्कूल अब एजुकेशनल रेडियो प्रोग्राम चला रहे हैं जहां बच्चे खुद भी बोलते हैं और सीखते हैं। रेडियो और संगीत, एक दिल का रिश्ता। अब बात करें रेडियो और संगीत की, जब कोई गीत रेडियो पर आता है तो उसमें एक अलग ही एहसास होता है। आपकी पसंद का गाना अचानक बज जाए तो लगता है जैसे किसी ने दिल की बात सुन ली। रेडियो के गाने सुनकर ही तो न जाने कितने दिल जुड़े, कितने टूटे हुए दिल संभले और कितनी रातें सुकून से बीती। रेडियो का भविष्य, आवाज कभी बूढ़ी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो AI, YouTube, इंस्टा रील्स का जमाना है, लेकिन सच यह है कि रेडियो ने हर दौर में खुद को बदला है पर मिटाया नहीं। आज रेडियो डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर मोबाइल रेडियो एप्स तक, FM चैनल से पॉडकास्ट तक, रेडियो हर दिन नई आवाजों के साथ पुराने अपनापन को संजो कर चल रहा है। रेडियो कोई मशीन नहीं है, ये है हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे दिलों की गहराई में बसी आवाज। रेडियो सुनना किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा है, जो शायद दिखता नहीं पर जब बोलता है तो सारा दिन अच्छा लगने लगता है। कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो रूह में उतर जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी आवाज को सुना है जो आपकी तन्हाई में साथी बन गई हो, या वो गीत जो बरसों बाद सुनकर आंखें नम कर दे? अगर हाँ, तो आपने रेडियो को जिया है। आज हम जिस रेडियो को इतने रूपों में देखते सुनते हैं, उसकी राह आसान नहीं रही। स्वतंत्रता के बाद रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था, समाचार, विचार और चर्चाएं सब कुछ सरकारी नियंत्रण में होती थी। परंतु 1995 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेडियो तरंगों पर केवल सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, और यही एक नई शुरुआत हुई। 2002 में शैक्षणिक संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति मिली, और फिर 2006 में स्वयंसेवी संस्थाओं को। ये था एक ऐसे माध्यम का तंत्रीकरण जो अब लोगों की आवाज बन गया। जब देश में कोई आपदा आती है, भूकंप, बाढ़ या महामारी, तब अधिकतर माध्यम बंद हो जाता है, लेकिन रेडियो तब भी काम करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब कुछ बंद था, तब रेडियो पर डॉक्टर, काउंसलर, शिक्षक सबने अपनी आवाज से लोगों का हौसला बनाए रखा। रेडियो उस वक्त अकेला साथी था जो न कभी थका न रुका। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये एक भावना है, एक रिश्ता है। जब कोई नहीं होता, रेडियो होता है। जब सब कुछ थम जाता है, तब रेडियो चलता है। जब दिल भरा हो, रेडियो समझता है। तो रेडियो को जरूर सुनिए, क्योंकि ये आवाजें दिलों में बस जाती है। रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं, ये एहसासों की आवाज है। ये वो साथी है जो बोलता कम है पर सुनता बहुत है।
जब दुनिया भाग रही होती है मोबाइल और

इंटरनेट की तेज रफ्तार में, तब भी कहीं ना कहीं कोई रेडियो ऑन करके सुकून की तलाश करता है। अक्सर जिंदगी में जब कोई नहीं होता, जब चाय की प्याली हाथ में होती है और मन अकेला सा महसूस करता है, तब रेडियो होता है। वही पुराना मीठी आवाजें, वही जुबां जो सीधा दिल में उतरती है। रेडियो कभी चेहरा नहीं मांगता, ना शक्ल ना पहचान, बस एक धड़कती आवाज देता है जो अजनबी होकर भी अपनों जैसा लगती है। सोचिए ना, रेडियो वही है जिसने न जाने कितने घरों को जोड़ा। दूर गांवों से लेकर शहरों के फ्लैटों तक रेडियो ने हर दीवार के पार आवाज पहुंचाई। देश की आवाज, लोक की बात, दिलों की धड़कन सब रेडियो से जुड़ती रही। रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो हमारी कल्पना को जिंदा रखता है। जब हम किसी कहानी को सुनते हैं, कोई गीत, कोई विचार, तो हमारे मन में खुद ब खुद एक चित्र बनता है। रेडियो हमें कल्पना का कैनवास देता है जिस पर हम अपनी भावनाओं के रंग भर सकते हैं। रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, वो सच्ची जानकारी है, सच्चा साथी है। जब इंटरनेट बंद हो जाए, जब मोबाइल की स्क्रीन थक जाए, तब भी रेडियो चल रहा होता है, धड़कता हुआ, गूंजता हुआ। आज की इस डिजिटल दुनिया में रेडियो वो हीरा है जो नमी से नहीं, समय से और चमकदार होता जाता है। इसकी आवाज में एक अपनापन है, एक खामोश दोस्ती है जो कहे बिना बहुत कुछ कह जाती है। शब्दों की इस यात्रा में अगर आपके दिल में रेडियो के लिए थोड़ी सी भी जगह बनी हो, तो समझिए कि आपने उस हीरो की रोशनी देखी है जिसे हम सालों से महसूस करते आ रहे हैं। रेडियो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये वो दोस्त है जो कभी बोर नहीं करता, कभी छोड़ कर नहीं जाता, क्योंकि जब सब स्विच ऑफ हो जाए, रेडियो अब भी चलता है। तो आज जब आप बाहर निकले, जब अगली बार अकेलापन चुपके से पास आ जाए, या फिर जब आपको लगे कि दुनिया की आवाजें थक गई है, तो बस रेडियो ऑन करिए, क्योंकि शायद आपका कोई अधूरा ख्वाब, कोई भूली हुई याद रेडियो की लहरों में आप भी सांस ले रहे हो। रेडियो एक बटन से नहीं चलता, ये चलता है एहसासों से, और जब एहसास जुड़ते हैं तो एक आवाज भी पूरी दुनिया बन जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद मंजू शर्मा जी का, जिन्होंने अपने शब्दों से न केवल हमारी विचारों को छुआ, बल्कि जीवन के गहराए अनुभवों को भी उजागर किया। उनकी बातों में जो सच्चाई, सादगी और संवेदनशीलता थी, वो हमारे श्रोताओं के दिल में जरूर बस गई होगी। तो चलिए युवा दोस्तों, इसी के साथ अब कदम रखते हैं संगीतों की दुनिया में और सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत। तो इसी के साथ युवा श्रोताओं, मैं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा विदा लेती हूँ, ये वादे करते हुए कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मिलेंगे। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की
4: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया
5: बन गया बजट
4: हाँ
5: 5,000 बच गए
4: तो नई साड़ी ले ले
5: ना
4: पिछले महीने तो ली थी
5: एक और नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो
4: बढ़िया जाओ भाई
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी
6: हर जिले की अपनी कहानी हर रचनाकार की अपनी आवाज क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए क्या आप अपनी संस्कृति विरासत पर्यटन परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति विरासत पर्यटन परंपराओं स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज हर जिले की अपनी कहानी हर रचनाकार की अपनी आवाज अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें आपकी कहानी आपकी पहचान अब पूरे भारत के नाम
3: ये कहानी है एक गृहिणी

बिल्कुल श्रोता दोस्तों, ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। और लीजिए, अब प्रस्तुत है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और ओपी नैयर की उरे जब जब जुल्फे तेरी।

दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, बिल्कुल इसी नगमे के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आज यहीं पर संपन्न होता है। और इसी के साथ ही आज हम इस तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पंचनन डोले, तकनीकी अभियंता तनातुम और मैं आपकी रेडियो दो सुलोकना। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल की ओर। आप सुनेंगे FM गोल से रिलेट कार्यक्रम और हम आप सभी से कल सुबह पुनः मिलेंगे 5:48 से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: Chuck Chuck Abishake.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग ई की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डीएक्सेलेरेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
3: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी एसआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र न तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया न भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पर यह कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उससे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी, तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है, उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ।
2: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
0: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो भी कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डी एस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर इंसेंट ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांगी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
2: जी हाँ बिल्कुल, जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो LAC की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
3: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है, और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़कर के स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है, तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें, और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना, ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में विश्वास की कमी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था। बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही है डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुटिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पिटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रेजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
2: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो धर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल सिमेट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इम्प्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड है लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
2: मेजर जनरल अशोक जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
3: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड है। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था। और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को, जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था, वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया। बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है, वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी, और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जो जिला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बेटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहां बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
2: प्रोफेसर पंत, आपसे समझने की कोशिश करें।

0: रहेगा, क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं, और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है, और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो
1: जी
0: मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है, और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जियोपॉलिटिक्स।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: जय हिंद, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इस असर

0: नुवाकोट और चितनवन तक पहुंच गया। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क किया जा सकता है। दूतावास ने बताया कि वे बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जानमान की हानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक आई बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बात की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनयिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलोवन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. Nepal Prime Minister Balendra Shah reviewed the situation and rescue and relief efforts with officials and federal parliamentarians from affected districts, including Rasuwa, Nuwakot, Thading, Gorkha and Chitwan. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of the Himalayan nation. In a social media post, President Draupadi Murmu conveyed sympathies to her Nepalese counterpart, Ramchandra Podel, and the people of Nepal. Vice President C.P. Radhakrishnan also expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India stands with Nepal and its people in the face of this challenge. The Indian Embassy in Kathmandu said it has remained engaged with the relevant authorities of the government of Nepal for early rescue and relief for internationals affected by the flash floods. The embassy has issued emergency numbers for assistance and information regarding internationals affected by the flash floods in Nepal today. The embassy said people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977-985-131-6807, +977-970-910-7500 and +977-981-032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in the neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. The National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. NDRF Commandant Ganeshwar Singh stated this while talking to media in New Delhi. India and China have reaffirmed their commitment to maintain peace and tranquility in the border areas and create an atmosphere for healthy and steady development of bilateral relations. The 25th round of talks between the special representatives of India and China on the boundary question was held in Beijing yesterday. China's Foreign Minister Wang Yi and National Security Advisor Ajit Doval had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question and reached 8 points of outcomes and consensus. The two sides underlined their commitment to advancing negotiations on a framework for the settlement of the boundary question. Keralites worldwide today celebrated Onam with joy and enthusiasm as devotees thronged prominent temples on Thiruvonam. The festivities began with traditional floral carpets known as Onapukalam to welcome the legendary King Mahabali and special pujas at temples. Eid Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, was celebrated today with religious fervor in various parts of the country. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए, मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के फुटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंगा, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों और मृतकों के परिजनों के साथ हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 977-985-1316-807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: बाढ़ के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने बिहार में 9 और उत्तर प्रदेश में 11 टीमें तैनात की हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में एनडीआरएफ के कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ के कारण गंडक नदी में संभावित बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने नेपाल घूमने गए तमिलनाडु के पर्यटकों के लिए एक सहायता केंद्र की घोषणा की है। सरकार ने सहायता केंद्र और विदेश मामलों के राज्य विभाग से संपर्क करने की अपील की है। नई दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत न्यूयॉर्क में शनिवार को आयोजित होने वाले हिंदू समुदाय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का प्रमुख आधार भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंब होगा, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम द्वारा किया जा रहा है। इसमें अमेरिका के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सामुदायिक संगठन शामिल हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया।
5: चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी स्थिति के समाधान के लिए निर्धारित व्यवस्था, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य सहमत तंत्रों सहित मौजूदा राजनयिक और सैन्य माध्यमों से शीघ्रता से किया जाएगा। अनुपम और आनंद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल में स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में कहा कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। प्रशासन ने बताया कि बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। भारतीय टीम श्रीलंका में श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच क्रिकेट मुकाबलों की तारीखें सामने आ गई हैं। टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 सितंबर से शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani. I'm Nina Arakil with the World News. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in Himalayan nation. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. In Pakistan, 14 infants killed after a fire broke out in gynecology ward of a hospital in Islamabad. And in men's cricket, India tightened grip on Colombo test as host Sri Lanka struggled at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. We have a death report.
7: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for World News.
6: Security officials said at least 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia and United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. Nepal Prime Minister Birendra Shah reviewed the situation and rescue and relief efforts with officials and federal parliamentarians from affected districts including Rasuwa, Nuwakot, Dharding, Gorkha and Chitwan. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of the Himalayan nation and assured all possible humanitarian assistance to the neighbouring country following the devastating flash floods. In a social media post, President Draupadi Murmu conveyed sympathies to her Nepalese counterpart Ramchandra Podel and the people of Nepal. Vice President C.P. Radhakrishnan also expressed grief at the loss of the lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Birendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. The Prime Minister said our teams are coordinating closely on rescue and relief efforts. The Indian Embassy in Kathmandu said it has remained engaged with the relevant authorities of Government of Nepal for early rescue and relief for Indian nationals affected by the flash floods. The embassy has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal today. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support people of Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India stands with Nepal and its people in the face of this challenge. India and China have reaffirmed their commitment to maintain peace and tranquility in the border areas and create an atmosphere for healthy and steady development of bilateral relations. The 25th round of talks between the special representatives of India and China on the boundary question was held in Beijing yesterday. China's Foreign Minister Wang Yi and National Security Advisor Ajit Doval had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question and reached 8 points of outcomes and consensus. The two sides underlined their commitment to advancing negotiations on framework for the settlement of the boundary question. It will be in accordance with the agreement on the political parameters and guiding principles for settlement of the India-China boundary question signed in 2005 and the consensus reached in subsequent special representative talks in pursuit of a fair, reasonable and mutually acceptable solution. India has asserted that the immediate priority of the United Nations Security Council must be to take steps to mitigate the humanitarian consequences of ongoing hostilities. Addressing a Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council's role in mitigating global and local food crisis, India's permanent representative to the UNP, Harish, called for safe, rapid and unimpeded humanitarian access as well as support for the effective decon-friction arrangements.
8: Food insecurity remains one of the gravest humanitarian consequences of armed conflict. Today's conflicts increasingly generate ripple effects far beyond the immediate theater of hostilities. Disruptions to energy markets, fertilizer supplies, maritime transport, humanitarian logistics and agricultural trade have demonstrated how regional conflicts can threaten food security across the world, with the greatest burden falling on developing countries that are highly import dependent. Let us nevertheless remain clear about the causality of this challenge.
6: This is Akashvani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. In Pakistan, 14 infants were killed after a fire broke out today in the gynecology ward of a hospital in Islamabad. In a statement, the hospital administration said the newborns were killed when the fire broke out on the third floor of the hospital's mother and child ward. The administration said rescue teams were immediately rushed to the scene and the fire was brought under control. Protests against Pakistan's alleged denial of basic rights to the people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, continued across the region despite a security crackdown and restrictions on the movement of essential supplies. Demonstrations continued in Rawalkot and other parts of POJK, with protesters opposing restrictions allegedly imposed by Pakistani authorities. In men's cricket, host Sri Lanka reached 229 for 6 in the second innings at stumps on day 4 after receiving follow-on from India in the second and final test in Colombo. Sri Lanka now lead by 16 runs. Earlier in the day, visitors enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. For India, Prasidh Krishna and Manav Sathar took 3 wickets each, while Saransh Jain claimed 2 wickets. India had declared their first innings at 503, powered by centuries from Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal. The visitors are currently leading the 2-match series 1-0. In Hungary, India's Veer Chotrani and Velavan Sendulkumar have reached the semi-finals of the PSA Budapest Squash Open. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. Massive flash floods hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in Himalayan nation. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. In Pakistan, 14 infants killed after a fire broke out in gynecology ward of a hospital in Islamabad. And in men's cricket, India tightened grip on Colombo test as host Sri Lanka struggled at 229 for 6. That concludes tonight's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashvani. Good night.